से मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। इस खूबसूरत से गीत को अभी आपने सुना लता मंगेशकर के आवाज में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार की फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की।

भोर सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है खुद गर्ल्स फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने।

और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं खुद्दार फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है
2: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress, AITC, not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passports Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. The BJP launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan yesterday to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday. The campaign focuses on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The drive also marks 25 years of Mr. Modi taking oath as Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. It will continue till 17th of next month. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and the basis of evolving market dynamics. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20 international to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. And that is the end of this news bulletin.

0: गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
1: एक पत्रकार के तौर पे मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही, और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001 2 और 3 ये 2-3 सालों में रखा गया था, उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
0: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसर शाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला?
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब प्रशासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसा आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहाँ कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो
0: जी
2: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
0: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो

0: गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
1: पहले मैं ये जो अस्थानानी जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसको कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर 2 सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
0: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया।

0: वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? क्योंकि आज का जमाना अलग है। आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है। लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है। और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोड़ दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोड़ दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
2: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा। और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
3: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए हैं उनके लिए काफी कुछ, एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
4: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
2: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मोरबी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो समय

0: बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति की अगर आप एक अवलोकन करें, तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी की जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी, जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहर ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव-गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है, ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी, लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे, कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वने के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरिकल कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया, गांव-गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े-बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके उसने उसकी नींव रखी।

0: और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या किरणी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ
0: जी
1: किया जो आज
0: बिल्कुल
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखा ग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।

10:13 मिनट दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं निशा। आज आपके साथ आपकी हमसफर इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी में। और सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और भक्ति में झूम रहे हैं। क्या ही नज़ारा है ना। आते वक्त भी मैंने देखा कि लोग काफ़ी चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि बप्पा जो हैं उनके घर पर विराजे हैं। और काफ़ी सारा इमोशन जुड़ा हुआ है हमारा इस फेस्टिवल से। एंड आई होप कि आप सब इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी आज फ्राइडे है, कल से वीकेंड, 2 दिन। जी हाँ, वीकेंड पे और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप को काम की टेंशन नहीं होने वाली है, ढेर सारी छुट्टी और ढेर सारा साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका, और साथ में बप्पा की हाजिरी। क्या बात है कि नहीं। एंड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि आई नो कि आप खुशी के मूड में है ना, लेकिन ये याद रखिएगा कि ट्रैफिक के नियमों का ध्यान रखना है जब आप स्पेशली विसर्जन करने को जा रहे हैं। एंड घर पर भी आपको ख्याल रखना है, कि कोई भी काम है तो उसमें कोई एक ही इंसान काम ना करते रहे, उसका हम हाथ बटा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि खूब सारा इन्जॉय करना है, क्योंकि एक बार जो पल चला जाता है वो फिर मुड़ कर नहीं आता। और फेस्टिवल्स ऐसे ही होते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो है ना, एक बार साल में आता है और फिर उस फेस्टिवल के लिए हमें दूसरे साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो मूड कैसा भी हो, मूड को ठीक कीजिए और इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। खैर, आगे बढ़ेंगे। और ये मौका है गणेश चतुर्थी का, और इस मौके पर एक ऐसा गाना है जो अगर मैं प्ले ना करूं तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। ये है फ्रॉम द फिल्म डॉन, शंकर महादेवन की आवाज़ में मौर्या रे। तो इसी सॉन्ग की तरफ फिलहाल के लिए चलेंगे। आप सुन रहे नमस्ते हेलो आदाब, 10:15 सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहाँ पर हमारे साथ सरवर अली जी बने हुए हैं, इन्होंने अपने रेडियो सेट की फ़ोटो भेजी हुई है और लिखा है गुड मॉर्निंग मैडम, तो गुड मॉर्निंग टू यू टू। और लिखा है ओका सॉन्ग रिक्वेस्ट उंदी मैडम चप्पला। तो जी हाँ, बिल्कुल बताइए क्या है आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट, मैं ट्राई करूंगी कि उसे मैं प्ले कर पाऊँ। एंड फिलहाल के लिए इस खूबसूरत से गाने की तरफ चलते हैं जो हमें मौका दे रहा है कि खुलकर हम इस फेस्टिवल को इंजॉय करें। तो स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफएम रेनबो 101.9।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

What a lovely song, right? It was Careless Whisper by George Michael. दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं निशा आपके साथ आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में. वैसे दिन भी काफ़ी खूबसूरत है ना, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हर दिन खूबसूरत होता है. ये घर में एक अलग पॉजिटिविटी होती है, हमारी चारों ओर पॉजिटिविटी होती है क्योंकि लोग खुशी मनाने के मूड में जो होते हैं. वैसे सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही क्यों, हमें हर दिन खुश रहना चाहिए, हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर दिन थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी वाकई में बेहद खूबसूरत है उनके लिए जो शुक्रगुजार हैं, है ना, और जिनके पास थोड़ा बहुत सब्र है. ऑफ कोर्स वेल सब्र तो मेरे पास भी है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है टाइम बहुत ही स्पीड से जा रहा है, टाइम के पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है. और टाइम को देखते हुए यही कहूँगी कि हमारा जो पहला सेगमेंट है नमस्ते हेलो आदाब का वो यहीं पर समाप्त होता है लेकिन अगले सेगमेंट में हम फिर से एक बार लौटेंगे न्यूज़ हेडलाइंस के बाद जो अभी थोड़ी ही देर में आप सुनने वाले हैं. तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस.

0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
2: सुबह के 11:10 अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ, सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब. और आज मैं हूं आपके साथ, यानी मैं निशा, आपकी हमसफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में. वैसे तो अगर आपका साथ है तो ऑलरेडी ये जर्नी खूबसूरत ही है. और आपके साथ की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. एंड यस, यहाँ पर हमारे साथ हैं सबसे पहले तो सरवर अली जी. और सरवर अली जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग, और इनकी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है फ्रॉम द फिल्म यादगार, एक तारा बोले, तो मैं कोशिश करूँगी. एंड देन वी हैव अ मैसेज फ्रॉम महेश, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग निशा जी. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश फ्रॉम बालानगर. और हमारे यहाँ आए जिनके एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, मोहन जी आए, ये लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं जैसा लिख रहे हैं वैसा ही मैं पढ़ रही हूँ. और फिर लिखते हैं शराबी मूवी से कोई भी गाना, तो मैं ट्राई करूँगी. एंड यहाँ पर हमारे साथ मुनीर अली जी जुड़े हुए हैं, जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग, चूज़ हैप्पीनेस, स्प्रेड काइंडनेस एंड कीप शाइनिंग. वाह क्या बात है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. एंड लिखते हैं हैप्पी फ्राइडे, तो आपको भी हैप्पी फ्राइडे. और एक गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से भी, दोस्ताना फिल्म से कोई सा भी गाना. तो चलिए फ़िलहाल के लिए एक सॉन्ग रिक्वेस्ट मैं प्ले करने जाऊँगी जो मुझे फ़िलहाल के लिए मिल चुका है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. और ये सभी प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं. तो एक सॉन्ग रिक्वेस्ट जो मैं अभी प्ले करने जा रही हूँ वो है शराबी फिल्म से, और ये है महेश जी की पसंद पे. फिल्म आई थी 1984 में, और क्या कमाल का गाना किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ों में, बप्पी लहरी का म्यूज़िक है. तो यस, ये गाना अभी हम प्ले करेंगे आपके लिए. सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9. और अगर कोई मैसेज आप दिल से किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0402323484822, 4023234822, ये नंबर है. अगर आप किसी को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मैसेज पढ़ने का काम ज़रूर कर सकते हैं. एंड यस, यहाँ पर एक और मैसेज आ चुका है, इनका नाम अभी तक इन्होंने नहीं भेजा है. ओके, डीवी राव फ्रॉम अलवल, ये लिखते हैं हाय निशा, योर वॉइस इज जस्ट एज योर नेम, इट्स सो मेलोडियस, प्लीज प्ले ब्रायन एडम्स समर ऑफ 69. सो आई विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग. एंड थैंक यू सो मच डीवी राव जी फॉर सेंडिंग दिस मैसेज एंड फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए और मैसेजेस भेजने के लिए. एंड ये मेरी तरफ से आपके साथ धोखा हो जाएगा अगर मैं आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट ना प्ले करूँ तो, क्योंकि आप इतनी मेहनत से सुनते हो, मैसेजेस भेजते हो, अपना कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, टाइम किसी का भी हो वो टाइम कीमती होता है ना, तो मैं ये जानती हूँ. तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सॉन्ग्स में प्ले कर पाऊँ. एंड फिलहाल के लिए तो जिस सॉन्ग की मैंने बात की वो सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ. सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विद मी निशा.

कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लूटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लूटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया।

डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: FM Rainbow 101.9
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।
0: FM Rainbow 101.9
3: 11:21 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं निशा आपके साथ। और यहां पर ना एक खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी तो होती है आपके साथ, जहां पर ढेर सारे सॉन्ग्स आपके साथ होते हैं और साथ में होती हैं कुछ बातें। तो पहले सेगमेंट की तरह ही यहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे और साथ में होंगे कुछ सॉन्ग्स और बातों की बात करें दोस्तों। तो आज ना एक खास चीज़ जुड़ी हुई है आज के दिन से, और इस दिन के बारे में बात करें तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो आपको बता दें कि 18th September इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल इक्वल पे डे। अब सिंपल सी बात है ना, अगर दो लोग सेम या इक्वल वैल्यू का काम कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो उनकी सैलरी डिसाइड करने में उनका जेंडर क्यों मैटर करे, है कि नहीं। और इसी थॉट को हाईलाइट करता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ equal value. Well, the day is about creating awareness around the gender pay gap and encouraging workplaces to move towards greater pay equity. और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि globally women on average still earn around 20% less than men, although the size of the gap varies across countries, sectors and occupations. लेकिन equal pay का मतलब सिर्फ salary slip पर एक number नहीं है दोस्तों, it is also about equal opportunity, equal recognition and equal respect for the work that someone does. So whether you're a man or a woman, whether you are sitting in a corporate office, working in a shop, running a business or doing any kind of professional work, your contribution should be valued for what it is. And also, equal pay day is not only about what happens inside an office, it also makes us think about the work that happens at home. Work that often goes unpaid and unnoticed. Subah se ghar sambhalna, cooking, cleaning, taking care of children or elderly family members, managing 100 little things that keep the household running. Ye bhi work hai, bas iski salary slip nahi hoti, hai na? And across the world, women continue to carry a disproportionate share of unpaid care and domestic work. So, when we talk about equality, it's worth asking ourselves, are we valuing all kinds of work, including the work that doesn't come with a paycheck? Because sometimes, you know, appreciation can begin with something as simple as saying, I see how much you do. And perhaps that's another meaning of equality. Not just equal pay, but equal respect for the work people contribute, both inside and outside the workplace. Aur shayad isiliye dosto aaj ka message bahut simple hai, talent ka koi gender nahi hota, hard work ka bhi koi gender nahi hota, aur har kaam ke liye salary slip to bilkul bhi nahi hoti. To recognition aur opportunity mein bhi fairness honi hi chahiye, aur yahi ye din hame sikhata hai, international equal pay day. Umeed hai ki aapko yaad rahega, hai ki nahi, taki aap jab bhi dekhein ki koi equal kaam kar raha hai aur fir bhi वहां पर इक्वल पे नहीं है, तो आप उनके हक के लिए वहां पर लड़ सकें। वेल, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9, इट्स 11:24 बाय द स्टूडियो क्लॉक। एंड अभी मैं फिलहाल एक और सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करने जा रही हूं। यहाँ पर एक मैसेज आया था डीवी राव का अलवल से, और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक सॉन्ग की, समर ऑफ 69 बाय ब्रायन एडम्स। सो आई विल बी प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू, आई होप You are listening, so stay tuned. This is FM Rainbow 101.9.

0: and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book. Be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: FM Rainbow 101.9.
2: All right, it's 30 minutes past 11 by the studio clock. A very good morning, dear listeners. Aap sun rahe namaste, hello, aadab on FM Rainbow 101.9 aur aap ka humse judne ke liye aapka bahut bahut shukriya. Well, filhal ke liye baatein kafi ho chuki hain to main play karne ja rahi hu aapke request ke kuch songs, kyunki yahan pe jo bhi messages aaye hue hain kafi mehnat ke sath likhe jate hain aur kafi soch samajh kar aap song requests bhi bhejte hain, to uska andaaza hai mujhe aur isi लिए फिलहाल के लिए मैं कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट की तरफ चलूंगी. यहां पर हमारे साथ सरवर अली जी हैं, जिनकी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट थी फ्रॉम द फिल्म यादगार, और देन मुनीर अली जी हैं हमारे साथ दोस्ताना फिल्म से कोई भी सॉन्ग, और एक और मैसेज आया हुआ है, ये है महेश, इनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी प्ले कर दी है. वो सॉन्ग रिक्वेस्ट मोहन जी की तरफ से था और महेश जी की तरफ से, और लिखते हैं कि मेरी चाय की दुकान है और यहां पर मंटो राम आए हुए हैं और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं. ओके, इनका भी एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है. ओके, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस सॉन्ग को मैं प्ले करूंगी. एंड यहाँ पर हमारे साथ एक और हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं, लिखते हैं आई निशा जी, आई एम दीपू फ्रॉम मेहदीपट्टनम. ओके, हाय दीपू, लिखते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन. चलिए, इनका जो आंसर है इन्होंने पहले ही दे दिया है कि ही इज़ फाइन, सो चलो बढ़िया बात है, आई एम ऑल्सो फाइन. एंड गणेश जी को लाए आपने घर में, तो जी हाँ बिल्कुल. एंड कैन यू प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग जॉय बॉय बिगिनिंग टू फॉल इन लव, तो मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. और फिलहाल के लिए एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की तरफ मैं चलती हूँ. यहाँ पर जो भी सॉन्ग रिक्वेस्ट है मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन सभी को प्ले कर पाऊँ. सुनते रहिए ये FM Rainbow 101.9.

ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा। कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। एटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं।

0: రెయిన్బో 101.9.
1: Forty-eight minutes past 11 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Show chal raha hai, namaste, hello, aadab, main hoon Nisha aapke saath. Aur umeed hai ki Sarwar Ali ji bhi honge hamare saath, kyunki abhi maine unki pasand ka ek gaana play kiya from the film Yaadgar. Okay, and yes, isi ke saath hum aage badhenge aur bahut sare gaane play kiye abhi maine, to filhal ke liye hum karne wale hain kuch baatein. Aur ye jo baat hai na, ye बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं बात करने वाली हूँ द गट ब्रेन कनेक्शन की. जी हाँ, हैप्पी गट इज इक्वल टू हैप्पी यू. उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश हो, हेल्दी हो, और शायद खुश और हेल्दी रहने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम अपने गट का ख्याल रखें. अभी मत पूछिएगा कि ये गट भाई साहब हैं कौन, क्योंकि दोस्तों ये गट हेल्थ ही तो है जो हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है. और प्लीज़ ये भी मत पूछिएगा कि मैं शायद पूछ रही हूँ कि आपको एसिडिटी है या नहीं, बिकॉज गट हेल्थ इज मच मोर देन जस्ट डाइजेशन. और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि योर गट एंड योर ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर. जब पेट और दिमाग के बीच भी एक

कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो इसी को कहीं ना कहीं गट हेल्थ कहा जाता है, जिसे साइंटिस्ट गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है होगा कि एग्जाम या इंटरव्यू से पहले पेट में बटरफ्लाइज होने लगती है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो तो स्टमक में अजीब सी फीलिंग होती है, और जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, ये सारी ही चीज़ें होती है। तो दोस्तों, ये कनेक्शन जो है ना, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। वॉट हैपन्स इन योर गट कैन कम्युनिकेट विथ योर ब्रेन, एंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन कैन ऑल्सो इफेक्ट योर गट। और इसीलिए जब हम कहते हैं आई हैव अ गट फीलिंग, तो उस फ्रेज के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। मतलब ब्रेन का इफेक्ट गट पर होता है, और गट से भी ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं। और दोस्तों, अब इस पूरी स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बैक्टीरिया। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। और बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हम सोचते हैं बैक्टीरिया मतलब हो सकता है जर्म्स, बट ऐसा नहीं है। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर बैड, इनफैक्ट सम बैक्टीरिया एक्चुअली आर लिटिल हेल्पर्स, एंड दीज बेनिफिशियल बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प ब्रेक डाउन सर्टन पार्ट्स ऑफ द फूड वी ईट, स्पेशली फाइबर, एंड दे इंटरैक्ट विथ आर गट एंड इम्यून सिस्टम। लेकिन दोस्तों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली वेन देयर नंबर्स इंक्रीज टू मच और द बैलेंस ऑफ द गट कम्युनिटी गेट्स डिस्टर्ब। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, इट्स नॉट अबाउट हैविंग ओनली गुड बैक्टीरिया एंड एब्सोल्यूटली नो बैड बैक्टीरिया, इट्स अबाउट मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस। जब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक हेल्दी बैलेंस में होते हैं, दैट्स वेन योर गट इन्वायरमेंट कैन फंक्शन वेल। और यही रीजन है कि गट हेल्थ को सिर्फ पेट ठीक है या नहीं के क्वेश्चन से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज योर गट इज कनेक्टेड विद सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली बिकम्स, अगर हमारे गट में ये गुड बैक्टीरिया है तो हम इन्हें खिलाएं क्या? तो जी हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे, और वो बातें होंगी एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, एंड इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई थी महेश जी के फ्रेंड की तरफ से। तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9, एंड दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है।

0: भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dien Thungel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Monger, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with JNK police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft, Tejas Final Operational Clearance Twin-Seater Trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 Basic Trainer Aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG Helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly UNGA resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the U.S. next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel and Paraguay voted against it, and four others formally abstained. U.S. Deputy Permanent Representative Tammy Bruce defended the video refusal, accusing Palestine of not giving up on terrorism. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. Indian tech ball debutant Quincy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quincy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kuem Yen DY in Group A match 3. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the forenoon session today. The Sensex rose 113 points to 74,427, while the Nifty added 30 points to 23,301 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
4: FM Rainbow 101.9.

12:11 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और यहाँ पर आगाज़ होता है नमस्ते हेलो आदाब के एक और सेगमेंट का। तो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स, आप सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट भी मैंने कहीं ना कहीं प्ले कर दी है। एंड सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इसी के साथ एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है, और ये आई थिंक इमरान जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून। तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज, दिस इज़ लता फ्रॉम रामनगर। तो लता, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिखती हैं गुड मॉर्निंग निशा जी, तो गुड आफ्टरनून। जब इन्होंने मैसेज भेजा था तो ऑब्वियसली इन्होंने पहले भेजा था तो गुड मॉर्निंग लिखा है। एंड यस, ये लिखती हैं कि दिस इज़ लता फ्रॉम रामनगर, एंड इट्स वेरी गुड टू हियर यू कैन इट विल बी वेरी गुड टू हियर इफ़ यू कैन प्ले दिस सॉन्ग, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, और एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, अखियों के झरोके से। मैं आपको बताना चाहूंगी लता जी कि ये दोनों ही सॉन्ग मेरे फेवरेट हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि इन सॉन्ग्स को मैं प्ले कर पाऊं। एंड सरवर अली जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून, तो आपको भी गुड आफ्टरनून, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर हमारे साथ महेश जी हैं, वो भी लिखते हैं गुड आफ्टरनून निशा जी, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड एक तेलुगु सॉन्ग की रिक्वेस्ट है फ्रॉम ओकाडू मूवी। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी, एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, नमस्ते हेलो आदाब का दूसरा सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे, और एक बात ऐसी है जो अधूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही थी गट हेल्थ की, और हमारे गट में जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया है, उसमें से अगर गुड बैक्टीरिया को हमें जिंदा रखना है तो उन्हें हम क्या खाना खिलाएं। जी हाँ, तो इस बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक सॉन्ग आपके लिए, सुनते रहिए, सॉन्ग एंजॉय कीजिए, इस फेस्टिव मूड को एंजॉय कीजिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।

All right, it's 27 minutes past 12 by the studio clock. A very good afternoon, dear listeners. You are tuned in to Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9 show chal raha hai. Namaste, hello, adab. Main hoon Nisha aapke saath. Aaj aapki hum safar is musical journey mein. Well, music yahan par kaafi sare, songs aapne sune. और फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं कुछ बातों की तरफ. और बातों की बात करें तो एक चीज़ जो है वो हमने अधूरी छोड़ी थी. एक बात हम यहाँ पर बात कर रहे थे गट हेल्थ की. जी हाँ, एंड हाउ आर गट हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू आवर ब्रेन. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे गट में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों ही हैं. और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि अगर गट में गुड बैक्टीरिया हैं तो उन्हें हम खिलाएं क्या. वेल, योर गुड बैक्टीरिया लव फाइबर. ये आपको पता भी होगा, शायद बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा. और फाइबर हमें मिलता है मोस्टली प्लांट फूड से. सो अपनी प्लेट में वैरायटी लाएं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल्स, बीन्स, चिकपीज, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स. फॉर एग्जांपल दाल हो गया, राजमा हो गए, छोले, ओट्स, फ्रूट्स हो गए. दीज कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट फाइबर टू योर डाइट. और एक सिंपल रूल भी आपको याद रखना है, डोंट जस्ट ईट मोर वराइटी. जितनी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स आपके गट माइक्रोब्स को मिल सकते हैं. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रोटेट कीजिए. आज एक फ्रूट, कल कोई और. एक दिन बीन्स, दूसरे दिन दाल. डिफरेंट ग्रेन्स भी ट्राई कर सकते हैं. एंड देन वी हैव फर्मेंटेड फूड्स. कर्ड और योगर्ट, इफ़ इट सूट्स यू, कैन बी वन सिंपल ऑप्शन. क्योंकि गट हेल्थ के लिए हमें हमेशा फैंसी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती. समटाइम्स अ सिंपल इंडियन किचन ऑलरेडी हैव सम ग्रेट ऑप्शंस, जैसे दाल, सब्जी, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, कर्ड. और हाँ, पानी भी पीना ज़रूरी है, बिकॉज वेन यू आर ईटिंग इन अ फाइबर, एडिक्वेट हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मे बी द नेक्स्ट टाइम यू आर प्लानिंग योर मील, डोंट जस्ट आस्क मुझे क्या टेस्टी लगेगा खाने में. एक बार ये भी पूछिए, मेरे गट के गुड बैक्टीरिया को क्या पसंद आएगा, बिकॉज योर गट माइक्रोब्स आर लिविंग विथ यू एवरी सिंगल डे. And taking care of them is really one small way of taking care of yourself. और फाइबर्स से मुझे याद आया कि कितनी दफ़ा जब लोग संतरा खाते हैं

तो यू नो ऊपर का जो वो फाइबर होता है उसे पील कर देते हो, उसके उसको छील कर हटा देते हो, जो वाइट कलर के ऊपर धागे होते हैं, तो उसे भी हमें खाना चाहिए। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर हमारे साथ लता जुड़ी हुई थी फ्रॉम रामनगर, और इनकी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है जो मैं प्ले करना चाहूँगी। एंड देन हमारे साथ यहाँ पर एक और लिसनर, ये हैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी शाह इकबाल जी, जो लिखते हैं नमस्ते आरजे निशा जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो नमस्ते आपको भी, एंड विशिंग यू हैप्पी गणेश चतुर्थी, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, हम आगे बढ़ेंगे एक सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ जो आया था लता जी की तरफ से फ्रॉम रामनगर, और ये जो सॉन्ग है काफ़ी काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है, तो सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और जब आप सुनेंगे, अगर आपने ऑलरेडी इस सॉन्ग को सुना है, तो गुनगुनाने का मन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये सॉन्ग है ही इतना प्यारा सा। सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं निशा आपके साथ। वेल, ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पापोन की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हाइशा। वैसे इस सॉन्ग को सुनने के बाद कुछ और खूबसूरत लाइनें मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। ये लिखते हैं हमारे एक लिसनर, हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी शाह इकबाल जी। कहते हैं कि करता रहा फरेब कोई सादगी के साथ, इतना बड़ा मजाक मेरी जिंदगी के साथ, शायद मिली सजा इस जुर्म की मुझे, हो गया था प्यार मुझे एक अजनबी के साथ। वाह क्या बात है। जी हाँ, जब हम प्यार करते हैं ना तो हम ये देख के नहीं करते हैं कि हमें धोखा मिलने वाला है या फिर प्यार मिलने वाला है कि नहीं, प्यार तो बस हो जाता है। और बहुत सारे लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो उनके हाथ प्यार ही लगता है, और कुछ लोग जिनकी किस्मत में वो प्यार नहीं होता है उन्हें लगता है कि हमारे साथ जो है ना इंसाफी हुई है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर हमारे साथ कोई ना इंसाफी नहीं होती। बात ये है कि हमारे नसीब का जो है हमें वही मिलता है, तो जो हमारी लाइफ में वही सबसे खूबसूरत है, वही सबसे स्पेशल है ना, और उसी के लिए हमें हमेशा स्पेशल स्पेशल फील करना है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल फील करना है। वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और यहाँ पर इस म्यूज़िकल जर्नी में सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं होता है, आपके साथ होती हैं कुछ बातें। और दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता रहना ज़रूरी है कि नहीं, आई मीन ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक, फिर तीसरे पड़ाव तक, यूं ही आगे बढ़ता रहना होता है ज़िंदगी का नाम। लेकिन इस सफ़र में कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, और कई बार सबसे ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं हमारे रिश्ते। और दोस्तों इसी एहसास को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है एक फिल्म जिसका नाम है दादी की शादी। नाम सुनकर ऐसा लगता है ना कि कहानी सिर्फ एक शादी के इर्द गिर्द घूमती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म रिश्तों, परिवार, बदलते वक्त और ज़िंदगी के कई छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी रियलिटीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाती है, ऐसा कह सकते हैं एक रियलिटी चेक लाइफ को लेकर। और अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो एंटरटेन भी करे और कुछ सोचने पर भी मजबूर करे, तो मेरी तरफ से इस फिल्म की रिकमेंडेशन आपके लिए है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नीतू सिंह और कपिल शर्मा और आर शरद कुमार इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। और इसी के साथ एक और वेब सीरीज की बात करने जा रही हूं मैं, जिसे

देखना आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और ये सीरीज साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग जैसे बेहद अहम मुद्दों पर आधारित है। दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स और साइबर बुलिंग के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे हों या सीनियर सिटीजन्स, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। ऐसे में ये सीरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि ये भी समझाती है कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं, किन किन तरीकों से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, और हम खुद को कैसे अलर्ट रख सकते हैं। और इस सीरीज को देखने का मन शायद और भी ज्यादा करेगा जब आपको पता चले कि इसे राजकुमार हिरानी ने प्रेजेंट किया है। जी हाँ, वही राजकुमार हिरानी जी जिन्होंने हमें थ्री इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई जैसी यादगार फिल्में दी हैं। सीरीज में आपको शानदार परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। तो मेरी तरफ से ये दो रिकमेंडेशन है आपके लिए, फिल्म दादी की शादी नेटफ्लिक्स पर और प्रीतम एंड पेड्रो डिज्नी हॉटस्टार पर। और रही दोस्तों, फिलहाल म्यूजिक का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9। मैं उनिशा आपके साथ, आपके इस खूबसूरत सफर की हम सफर। तो सुनते रहिए रेनबो, क्योंकि रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ्स। और फिलहाल के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ कुछ और सॉन्ग्स की तरफ।

आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 शो चल रहा है। नमस्ते, हेलो, आदाब। और समय को देखते हुए यही कह सकती हूँ कि ये जो सेगमेंट है ये भी ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि हम एक और सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसे कहते हैं हेलो रेनबो। जी हाँ, हेलो रेनबो के साथ हम हाजिर रहेंगे दोपहर के 1 बजे, और हेलो रेनबो में आपसे हो जाती हैं ढेर सारी बातें। और बातों की बात करें तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, यानी आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के साथ जुड़कर, जो हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970475। तो ये 3 नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है, किस बात पर आज हम बात करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे, तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें होने वाली हैं। तो सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9 और मैं हूं निशा, आज आपकी हम सफर आपके साथ।

जी हाँ, गाने चलते रहते थे बैकग्राउंड में, हम गुनगुनाते रहते थे और अपनी ही यादों में खोए रहते थे। और वो दौर था 1950s का, जब इतने प्यारे प्यारे गाने हम आपकी आंखों में जैसा खूबसूरत गाना सुनने को मिला हुआ करता था, है ना। आजकल तो हम इन गानों को भूल ही चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो इन गानों को अभी भी सुनना पसंद करते, लेकिन यू नो नया दौर आता है, फिर नए नए गाने आते हैं, और कुछ पुराने गाने जो एक्चुअली मास्टर पीसेस हुआ करते थे वो हम भूल चुके हैं। और उन्हीं में से एक ये गाना फ्रॉम द फिल्म प्यासा, जो कि आई थी 1957 में, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ों में, म्यूज़िक डायरेक्टर एसटी बर्मन साहब और लिरिक्स साहिर लुधियानवी जी के। इसीलिए इस गाने के मतलब क्या ही कहने, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन सिंगर्स कमाल के, म्यूजिक डायरेक्टर कमाल के, और साथ में लिरिक्स जो हैं साहिर लुधियानवी जी के, वो भी एकदम कमाल के। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ गाने हुआ करते थे 50s में, 60s में, और इसीलिए कहा जाता है, खास करके जब बॉलीवुड सॉन्ग्स की बात आती है तो हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, है कि नहीं। और ये गाने ना हम बार बार सुनने की कोशिश करते हैं, बार बार सुनने को, गुनगुनाने को मन चाहता है। वेल, फिलहाल तो मन चाहता है कि हम आपसे ढेर सारी बातें करें, क्योंकि हेलो रेनबो का सफ़र जारी हो चुका है। जी हाँ, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स में

0: से पहले तो आपको बता दूं, नंबर्स हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970471 5। और सबसे पहले तो आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। और अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि आज का जो टॉपिक, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आज पूछने वाली हूँ आपसे। वेल दोस्तों, आज का दिन हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में सोचने का मौका देता है, और वो है इक्वालिटी, यानी बराबरी। क्योंकि आज हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इक्वल पे का सिंपल मतलब है अगर लोग सेम या कंपेरेबल वर्क यानी काम कर रहे हैं तो उन्हें फेयर एंड इक्वल पे मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं आज सैलरी की बात थोड़ी देर के लिए साइड में रखना चाहती हूँ, बिकॉज क्या इक्वालिटी सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड है? नहीं ना, वर्क प्लेस में इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इक्वल सैलरी नहीं हो सकता, इट कुड ऑल्सो मीन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस का इक्वल चांस, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और एक हेल्दी ट्रीटमेंट एट द वर्क प्लेस। और अगर हम वर्क प्लेस से बाहर देखें तो इक्वालिटी का मतलब हो सकता है एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ग्रो करने के इक्वल चांसेस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेयरली डिवाइड करना और सबके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना। तो आज मेरा सवाल आपसे थोड़ा ब्रॉडर है कि आपके लिए सैलरी के अलावा दुनिया में किस चीज़ में और इक्वालिटी होनी चाहिए? क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो रिस्पेक्ट है, क्या वो रिकग्निशन है, क्या वो प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस हैं, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहाँ कुकिंग, क्लीनिंग, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिर्फ एक पर्सन की ड्यूटी नहीं समझा जाना चाहिए। तो जी हाँ, यही क्वेश्चन है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ में इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, बिकॉज़ आज हम सिर्फ इक्वल पे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीटमेंट की। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि आपके लिए सैलरी के अलावा दुनिया में किस चीज़ में और इक्वालिटी होनी चाहिए। नंबर है 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970471 5। और अगर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना आंसर पहुंचाना चाहते हैं तो 4023234822 ये है हमारा नंबर। और अगर आप फेस्टिवल में व्यस्त हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर ढेर सारे गाने हैं जो मैं आपके लिए प्ले करूँगी। तो फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करूँगी किशोर कुमार जी की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాప్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫార్మ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: जी हाँ, मैंने सोचा था कि मैं कुछ सॉन्ग्स प्ले करूँगी अगर आप व्यस्त हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं। अभी मैं देख रही थी कि आपके कॉल्स आ रहे थे, तो अगर आपके कॉल्स आ रहे हैं तो मैं जुड़ना चाहूँगी अपने पहले कॉलर के साथ। हेलो रेनबो।
2: हेलो
0: हेलो,
2: मैम मैं
0: आयशा। ओके, बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो में, नमस्कार।
2: मैम मेरा नाम आशीष जी था, मैं शेरखान भाई की बहन हूँ।
0: ओके, हेलो आदाब।
2: अभी जो आप सभी सुनने वालों को मेरा सलाम और आपको भी आदाब।
0: थैंक यू।
2: आप कैसे हैं? मैम ये टॉपिक जो बोले इक्वल यानी के बराबर,
0: हाँ
2: तो मैम इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे आप, एजुकेशन के साथ साथ में इंसान के अंदर एक्सपर्ट भी होना बहुत जरूरी होती है। एजुकेशन है, एजुकेशन तो जरूरी है, तालीम जरूरी है, इसके साथ साथ अपनी जो आसपास के लोग होते हैं तो हमें उनकी एक्सपर्ट भी करनी चाहिए। एक्सपर्ट कि अपन बराबर हक देने की तालीम के साथ साथ में इज्जत भी जो है उनको बराबर इसका इज्जत देनी चाहिए और बराबरी पे रखना चाहिए उनको, ना कि हमने उनको हमारे पास एजुकेशन है।

0: आदि है और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीज है, लेकिन हम क्या करते, कभी हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं और ये हमारे से नीचे के लोग हैं, तो हम इनकी इनको जो है नीचे नीचे ही रखे, उनको ऊंचा होने ना दें। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं ये बताती हूँ, मेरे को मेरे हम भी एक आदमी लिखते हैं कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए और सबको बराबर
1: जी
0: देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो हमें सलाहियतें दी है और जो हमको बातें बताई हैं, तो उसके साथ साथ ही हमें इन लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में,
1: जी
0: जैसे कि फायदे मफाद मफाद यानी फायदा जो होता है वो फायदा नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग अब हम जैसे हैं, तो इनको भी आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने बराबर रखना चाहिए,
1: जी
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: हमारे पास जो तालीम है, जो एजुकेशन है, ये भी एजुकेशन तालीम हासिल करे और ये भी जिंदगी में आगे बढ़े और इनको भी वो सारी चीजें मिल जाए जो
1: बिल्कुल
0: ये चाहते हैं।
1: चलिए,
0: तो
1: थैंक
0: कभी
1: यू
0: भी
1: सो मच।
0: मैम कभी भी अपन सब जो काम कर रहे हैं, तो
1: हाँ
0: पहले अपने से नीचे के लोगों को देखकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत
0: चलिए
1: अच्छा
0: मैम,
1: लगा बात करके, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: थैंक
1: सो
0: यू
1: मच फॉर
0: मैम।
1: कॉलिंग, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थी आयशा जी, और इनका मतलब है बराबरी, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। वैसे तो आज इंटरनेशनल इक्वल पे डे है, बट यहाँ पर मैं इक्वालिटी की बात कर रही हूँ कि सैलरी के अलावा हर इंसान को किस चीज़ की बराबरी मिलनी चाहिए, है ना? तो इक्वल रिस्पेक्ट की बात की आयशा जी ने, जो मुझे बेहद अच्छी लगी। एंड और भी हमारे लिसनर्स हैं जिनसे मैं जुड़ना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे एक और लिसनर से जुड़ते हैं। हेलो रेनबो।
2: राधे राधे,
1: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप?
2: एकदम ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
1: एक्सलेंट
2: कैसे रही है आप?
1: जी।
2: और एक एक बात कहता हूँ मैं निशा जी, ये एक इक्वालिटी के विषय में क्या है, अपने अपने एक तजुर्बा रहना चाहिए, तजुर्बे से जब जाके आप इक्वालिटी का अगर बात करो तो कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा, मेरे मेरे मतलब से मेरा पर्सनल ओपिनियन वो है। हर चीज में हो, या पढ़ाई में हो, या
1: हाँ
2: काम में हो, या कुछ चीज में भी हो, अगर आपको इक्वालिटी चाहिए चाहिए तो आपको तजुर्बा होना चाहिए। और एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं, सब इतना लंबा सा अगर खींचना तो नहीं चाहता हूँ मैं, एक बात कहता हूं मैं,
1: जी
2: एक कवि ने कहा, खोना को ना पाना, पाना जिंदगी का यही है हकीकत और जिंदगी का यही है फसाना,
1: वाह क्या बात है, खोना और
2: बस
1: खाना।
2: खोना और पाना,
1: खोना और पाना,
2: जिंदगी
1: ओके, खोना और पाना।
2: खोना और पाना, जिंदगी का यही है हकीकत और जिंदगी का यही है फसाना।
1: सही
2: अरे
1: बात है।
2: क्या है, अपन अपन इक्वालिटी के पीछे भागना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक और एक डायरेक्टर और एक राइटर भी कहा था, एक बहुत बहुत बड़ी पिक्चर में, सक्सेस के पीछे मत भागो,
1: हाँ
2: एक्सीलेंस के पीछे,
1: जी,
2: बस वो एक रहना चाहिए, बस इक्वालिटी
1: चलिए।
2: का चीज आप पूछना नहीं, मांगना नहीं। और एक बात कहता हूं मैं, स्वतंत्र जो है कोई देने से आता नहीं निशा जी,
1: फ्रीडम, जी बिल्कुल।
2: अपने आपन लेना चाहिए
1: लेना
2: फ्रीडम,
1: पड़ता है।
2: या देश का हो, या संदेश का हो, या दोस्त का हो, या प्यार का हो, अपन पाना चाहिए हो वो चीज को, बस
1: ओके।
2: इतनी सी कहना था। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी
1: यू
2: मच।
1: टू, यू टू, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो जी हाँ, ये थे मुरली जी। एंड जब मैंने ये सवाल पूछा था तो मुझे पता था कि आप सभी के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, जैसे आयशा जी ने कहा कि रेस्पेक्ट की इक्वालिटी होनी चाहिए, और मुरली जी एक अलग जवाब के साथ कि इक्वालिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का जो फसाना है वही है खोना और पाना, यही है ज़िंदगी का फसाना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग थॉट्स के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, और इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, और मैं चाहूँगी कि मुझे और थोड़ी सी खुशी मिले, आपको भी थोड़ी सी और खुशी मिले, और हम जुड़ते रहें। जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715। आज का सवाल यही है कि आपके लिए सैलरी के अलावा दुनिया में किस चीज़ में और इक्वालिटी होनी चाहिए। और सैलरी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। तो इन सिंपल आप ये क्वेश्चन भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है दुनिया में किस किस चीज की बराबरी होनी चाहिए, हर एक इंसान के लिए इक्वल होनी चाहिए वो चीज। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन का हक हर किसी को होना चाहिए, है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन, कुछ भी, है ना, कहीं से भी वो इंसान आता हो, बट उसे इक्वल एजुकेशन का हक होना चाहिए। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा संदेश और उसके बाद मैं जुड़ूंगी हमारे कुछ और कॉलर्स से। एंड होपफुली अगर आप बिजी हैं तो एक प्यारा सा गाना मैं बजाना चाहूंगी, लेकिन देखते हैं कि हम कॉलर्स से जुड़ते हैं कि एक मेरी पसंद का सॉन्ग मैं प्ले करना करने की कोशिश करूंगी।
3: हेलो डियर लिसनर्स, मन लाइफ लो ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా, మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. అట్ 7 PM ఎవ్రీడే ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.

0: ఇరానీ చాయ్,
1: బన్ మస్కా,
0: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
1: టంగ్ ది కబాబ్,
0: కుర్బానీ కా మీఠా,
1: షహదూద్ మలాయ్.
0: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
1: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
0: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
1: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
0: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
1: ఇట్స్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ ఫ్లేవర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్.
0: జష్నే హైదరాబాద్.
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. చేవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
3: दोपहर के 1:26 दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ. और फिलहाल हेलो रेनबो के साथ आप एक एक करके हमसे जुड़ रहे हैं, तो आपका सबसे पहले शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. और बता दूं कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे 3 फोन नंबर्स हैं. पहला फोन नंबर है 0402323003, दूसरा 0402323484, और तीसरा 0402970475. और अगर आप उनमें से हैं जो हमें मैसेज भेजकर अपना आंसर भेजना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. वैसे दोस्तों, आज के लिए हेलो रेनबो में मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके लिए सैलरी के अलावा दुनिया में किस चीज़ में और इक्वालिटी होनी चाहिए. और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे. जी हाँ, तो आपके कॉल्स का रहेगा इंतज़ार. फिलहाल के लिए हम चलते हैं कुछ मैसेजेस की तरफ. यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय फ्रॉम रामनगर. ये लिखते हैं, हाय अर्जनिशा. तो हाय आपको भी, एंड उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे. मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये लिखते हैं, आज इक्वालिटी की बात हो ही रही है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इक्वालिटी में नहीं मानता. बराबरी की बात क्या ही करें, भारत में नारी का रुतबा ही अलग है. वो सिर्फ एक औरत नहीं, माँ है, बहन है, बेटी है, इसीलिए उसका हक बराबरी नहीं, इज्जत में सबसे ऊपर है. और ये भी लिखते हैं कि मैं पिछले 3 दिन से एक गाने की फरमाइश कर रहा हूँ, कोई नहीं बजा रहा, आप बजा देंगे प्लीज़, बैंजो से बप्पा दू. तो जी हाँ, गणेश चतुर्थी का मौका है और ये जो गाना है मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करूँगी. एंड यस, इन्होंने बराबरी के बारे में कहा कि मैं बराबरी को नहीं मानता, क्योंकि आज इंटरनेशनल इक्वल डे पर ऑब्वियसली बात की जाती है मेन एंड वुमेन की सैलरी में कितना अंतर है. तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो औरत है उसका रुतबा सबसे ऊपर है, उनको क्या ज़रूरत है बराबरी की, वो तो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और इज्जत में भी सबसे ऊपर है. तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज. और एक और मैसेज ये है हुदा बाबा नगर से, लिखती है, निशा जी कैसे आप. हाय हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं, आप कैसे हो. एंड कहती है, आप सबको जुम्मा मुबारक. तो आपको भी जुम्मा मुबारक. एंड लिखती है कि हमारी ज़िंदगी में 4 नंबर की बड़ी अहमियत है. 4 क्लास पढ़ लिया है तो अब 4 पैसे कमा लो, वरना 4 लोग क्या कहेंगे. वाह क्या बात है. एंड यस, एक सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट है, वो लम्हे वो बातें, तो मैं कोशिश करूँगी. एंड इक्वालिटी के बारे में लिखती है कि सबको बराबर देखें, खुशियों में साथ रखें, गम में याद रखें, गिफ्ट के लिए हैसियत ना देखें. तो जी हाँ, बिल्कुल. थैंक यू सो मच इस बहुत ही प्यारे से मैसेज को लिखने के लिए. एंड यहाँ पर एक और मैसेज, हाय निशा जी, मेरे साथ निज़ाम जी हैं, आज सुबह से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले किए हैं आपने, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच निज़ाम जी. ओके, सो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ, देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं. हेलो रेनबो.
4: हेलो, नमस्कार जी.
3: हेलो नमस्कार जी, प्रभाकर जी कैसे हैं आप.
4: क्या पावर है.
3: देखिए, मैं आपकी आवाज़ पहचान चुकी हूँ अब.
4: हेलो नमस्कार जी बोले तो पहचान लिए।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
4: बहुत मेमोरी पावर बहुत बढ़िया है
3: जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और बताइए कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छी है, आप कैसी है?
3: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं
4: आपको भी।
3: थैंक यू
4: का और ब्रह्मोत्सव वेंकटेश्वर स्वामी का भी।
3: थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
4: और कुछ बोलिए मैडम।
3: और मैं इक्वालिटी की बात कर रही थी कि आपको क्या लगता है दुनिया में किस किस चीज की बराबरी होनी चाहिए, हर किसी को उस चीज का हक मिलना चाहिए।
4: रेस्पेक्ट का भी बोले ना।
3: रेस्पेक्ट जी बिल्कुल।
4: रेस्पेक्ट और सैलरी का भी बारे में भी पूछे थे।
3: हाँ सैलरी के बारे में पूछा। तो हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ऑन एयर मैडम।
3: हाँ जी ऑन एयर।
4: तो हम वॉलेट प्रभाकर बात कर रहा हूँ। मैडम नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: पहले सबसे बड़ी अच्छी है रेस्पेक्ट देने का।
3: रेस्पेक्ट।
4: कोई ऑफिस गए अपने काम पे, वो आप

0: ऑफिसर को पहले नमस्कार करे तो 50% अपना काम हो जाता
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात,
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्हें छोटा हो बड़ा हो, रैंक में बड़ा है अपने से, मगर उम्र में छोटा है तो भी नमस्कार करना वो रिस्पेक्टेबल है।
1: रिस्पेक्ट बनती है।
0: रिस्पेक्ट बहुत बनती है। और अपना पछाणत वाले कोई रिश्तेदारे में भी है तो पहले नमस्कार करे तो उनके आशीर्वाद मिलता अपने को।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ ब्लेसिंग्स मिल
0: उसके
1: जाती है।
0: हाँ, उसके बाद सैलरी के बारे में बोले तो सैलरी के फैमिली को देखना है पहले, बच्चों को पढ़ाना सिखाना ये करने के बाद में थोड़ा
1: जी।
0: बैंक में डालना, छुपा के रखना थोड़ा, पूरा भी नहीं डालना, पूरा अपने को फैमिली को मार खा के ये करके वो खाना नहीं खिला के पूरा छुपा के नहीं रखना, उतना
1: बिल्कुल
0: ही
1: बिल्कुल
0: उतना ही रखना।
1: बिल्कुल। ओके तो जी
0: बच्चों की ज्यादा
1: हाँ।
0: रखे तो भी परेशानी छे। हाँ ना, क्यों बोलते उन्हें सोमरी बन जाते, कोई काम नहीं करके कमा के रखे तो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, जितना है उतना ही रखना
1: ओके
0: और सैलरी का भी देख के खर्च करना पड़ता
1: ओके तो चलिए,
0: ना।
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक
0: थैंक यू, वो लेडी को
1: यू
0: बोलता नमस्कार।
1: थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। ओके तो जी हाँ, ये थे प्रभाकर जी। और कितना सही कहा ना इन्होंने कि अगर आप जैसे ऑफिस में एंटर कर रहे हो, सबसे पहले अगर किसी को नमस्कार करते हो, कोई आप आपसे एज में बड़ा है, तो थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाती है। अगर किसी को देखकर स्माइल करते हो, किसी को आप रिस्पेक्ट देते हो, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिल जाती है, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब मिल जाती है कि नहीं? और कभी कभार अगर सामने वाले इंसान का मूड अच्छा हो, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, विच यू नो क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड अस। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक और कॉलर की तरफ चलेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो रेनबो,
2: गुड आफ्टरनून निशा जी।
1: गुड आफ्टरनून,
2: गुड
1: बहुत
2: आफ्टरनून
1: बहुत स्वागत है रमनया जी।
2: क्या क्या क्या जी, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट हो कि रेस्पेक्ट
1: गणेश चवीति शुभकांक्षलु।
2: गणेश चवती को तुम्हारे भी शुभाकांक्षलु,
1: थैंक यू,
2: ब्रह्मोत्सव को भी शुभाकांक्षलु, सबको
1: धन्यवाद।
2: सबको आर्जे अभी डिजिटल सबको भी शुभाकांक्षलु।
1: थैंक यू।
2: तुम्हारे रेस्पेक्ट कर बोले ना, रेस्पेक्ट का तो जिंदगी में हर एक जने भी गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट।
1: गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये हर किसी को याद होना चाहिए, मुंह जबानी मतलब बाई हार्ट, है कि नहीं? गिव एंड टेक का इस सिस्टम है, रिस्पेक्ट लव। अगर आप देंगे तभी आपको मिलेगा।
2: रिस्पेक्ट सबको, घर में भी रहना बाहर में रहना सबको रहना, इक्वल इक्वल समान इक्वल सी हमें क्या क्या काम करे तो भी सबको, बड़ा आदमा को रिस्पेक्ट देना, छोटा आदमा को भी रिस्पेक्ट देना, छोटा आदमा को आशीर्वाद देना, बड़ा आदमा को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद भी लेना हमें।
1: जी जी
2: वैसा तो सबके क्या होता है, सब इक्वल इक्वल नेशनल इक्वल डे होता है। क्या उसके मतलब क्या है इक्वल, तो सबको लेडीज के लेडीज है ना, जेंट्स है ना, भाई होना बहन होना कौन भी तभी रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना माँ, वैसा
1: जी,
2: मैं बोलने
1: सब
2: का।
1: सबको रेस्पेक्ट देना है।
2: हाँ,
1: ओके
2: सबको रिस्पेक्ट देना,
1: चलिए।
2: सबको मिल सो अच्छा प्यार से बात करना, प्यार से लेना। अब
1: हाँ,
2: निशा
1: जैसे
2: बात
1: जैसे
2: करता
1: आप प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल
2: अब
1: वैसे ही।
2: निशा हाँ अब निशा बात करता है ना, प्यार से बात करता है, अब अभी प्यार से बात करती है।
1: ओके। थैंक यू थैंक यू रमनया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, बहुत सारे लिसनर्स हमसे जुड़े और उनका कहना यही है कि इक्वल रेस्पेक्ट होना चाहिए सबके लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो और भी बातें करेंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको लिए चलूँगी एक सॉन्ग की तरफ। और सॉन्ग की तरफ इसलिए भी क्योंकि अभी अभी एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है। यहाँ पर लता हमारे साथ रामनगर से जुड़ी हुई हैं एंड

ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच निशा जी, यू मेड माई डे बाई प्लेइंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. सो ऐसे कैसे मैं और सॉन्ग्स ना प्ले करूं, जब तारीफें भी मिल रही हैं तो बनता है ना सॉन्ग्स प्ले करने का, है कि नहीं. और अभी हमारे एक और लिसनर हमसे जुड़े हैं, ये हैं अश्विन जी फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट. लिखते हैं कि छोटी छोटी बातों को दिल में जगह ना दें, क्योंकि अगर ये दिल में घर कर जाएं तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं. वाह क्या बात है. और इसीलिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातों को ना अपने दिल में जगह ना दें, क्योंकि एक बार कोई रिश्ते में दरार आती है ना तो वो दरार भरना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं. एंड ये अश्विन जी फ्रॉम कोटी कुशल मार्केट लिखते हैं, जय श्री कृष्णा. तो आपको भी जय श्री कृष्णा. और लिखते हैं कि आप आए तो हमारा दिन बन जाता है. वैसे मैं भी जब यहाँ पर आती हूँ ना तो मेरा भी दिन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का साथ रहता है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो मुझे भी बेहद अच्छा लगता है. एंड निशा जी को नमस्कार बोलेंगे तो मैसेज बहुत दिल से पढ़ेंगे. वैसे तो आप हमेशा दिल से पढ़ते हो. जी हाँ, मैं दिल से ही पढ़ना चाहूँगी आप सभी का मैसेज. और एक और मैसेज है, उसको मैं थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी शो में. फिलहाल के लिए आपको लिए चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, तो सुनते रहिए. ये है FM रेनबो 101.9. हेलो रेनबो का सफर है जारी. एंड जी हाँ, एक सॉन्ग रिक्वेस्ट थी. ये थे विजय, और इनका कहना था कि 3 दिन से सॉन्ग की रिक्वेस्ट हो रही है, तो फाइनली फाइनली ये जो कंप्लेंट है, मैं नहीं चाहूंगी कि आगे भी ये कंप्लेंट ही रहे, और मैं इस सॉन्ग को प्ले करूंगी, बप्पा फ्रॉम बैंजो. तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: ఏం మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్ కు పట్టుకొచ్చినావు.
1: వింటేజ్ బార్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్త్ ఉంటది.
0: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
1: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
0: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలిస్తాయి మామా నీకు ఇవన్నీ?
1: జష్న్ హైదరాబాద్, జష్న్ హైదరాబాద్.
2: दोस्तों आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9. मैं उनिशा आपके साथ विद हेलो रेनबो. जी हाँ, हेलो रेनबो वही सफर है जहां पर हो जाती है आपसे ढेर सारी बातें, और बातें हो भी क्यों ना, ये सेगमेंट ही है बातों के लिए, है कि नहीं? तो आई होप कि बहुत सारी बातें आपसे कर ली है मैंने. अगर आपको लग रहा है कि सॉन्ग्स भी प्ले होने चाहिए तो प्लीज एक आप मैसेज भेज दीजिएगा कि बातें अगर बहुत हो गई तो एक सॉन्ग भी बिल्कुल बनता है. वेल, बातों की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ लिसनर्स जुड़े हुए हैं. यहाँ पर हैं हमारे साथ एक लिसनर पोली शेट्टी मेहर बाबा. निशा मैडम गुड आफ्टरनून, आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. माई नेम इज़ होली शेट्टी मेहर बाबा. जय गणेश महाराज जी की. ओके, तो जी हाँ, जय गणेश महाराज जी की, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देन अश्विन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और ये लिखते हैं हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण. तो आपको भी जय श्री कृष्ण. और एक प्यारा सा मैसेज लिखा है इन्होंने कि भावनाओं को समझने के लिए संवेदनशील हृदय चाहिए, दर्द को समझने के लिए अपनापन चाहिए, ईश्वर को महसूस करने के लिए सच्ची आस्था चाहिए, और इंसान को समझने के लिए इंसानियत चाहिए. वाह, क्या बात है. जी हाँ, अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत का होना तो बनता ही है. अगर हमें इंसानियत ही ना हो तो हम इंसान किस काम के, है कि नहीं? इंसान को बनाया ही गया है, उसको सेल्फ अवेयरनेस इसीलिए दी गई है ताकि वो दूसरों के साथ अच्छा कर पाए, है कि नहीं? अपने सही गलत का हिसाब रखे. अगर हम ये सब ही करना भूल जाएं तो हम किसी काम के इंसान है ही नहीं, है कि नहीं? तो चलिए, बहुत बहुत प्यारा मैसेज, आपको धन्यवाद है. एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. हमारे कुछ कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और आज का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि आज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे. तो मैंने आपसे यही पूछा था कि आपके लिए सैलरी के अलावा दुनिया में किस चीज में और इक्वालिटी होनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो रेनबो. हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार.
3: నమస్కార్. బాగున్నారా మేడం?
2: బాగున్నారా.
3: మీ పేరు మేడం?
2: అనిషా.
3: అనిషా, కే రమేష్ మాట్లాడుతున్నానమ్మా.
2: ఓకే జీ, బోలియే.
3: టాపిక్ ఏమి ఇచ్చామమ్మా?
2: సాలరీ కి అలావా ఆర్ కిన్ కిన్ చీజో మే ఈక్వాలిటీ హోనీ చాహియే.
3: అచ్చా,
2: కే రమేష్ బాత్ కర్ రహే హై మేడం. హా, హమ్ ఆబ్జర్వ్ కర్తే హై తో ఇసిలియే యే క్వెశ్చన్ హై
3: మేడం. हर चीज में क्वालिटी रहना, जो भी लेना है क्वालिटी रहना. आईएसए देख के लेना है और आलमार देख के लेना है, वो उसको कंपल्सरी देख के लेना ही अच्छा है. अपन हमारे बचपन में तो कुछ भी नहीं था, अभी बीच में आ गया ये. पर वो जमाने में तो आप जमाने में मात्र अगर डुप्लीकेट उड़ेद का चाल ओरिजिनल इच्छे चाल बागे प्रतिदा डुप्लीकेट इन डुप्लीकेट लेदन प्रति दाँटो ప్రతి దాంట్లో డూప్లికేట్ ఉంది. ఇప్పుడు నెయ్యి తీసుకున్నా కూడా వెన్న తీసుకున్నా కూడా అంతా కలిసి వస్తుంది, అంత డేంజర్ ఉంది అనమాట. ఇప్పుడు అందుకోసం క్వాలిటీ చూసి ఇస్తున్న మంచి నమ్మకమైన షాప్ లో నమ్మకమైన తీసుకుంటేనే బాగుంటుందని నేను
2: ధన్యవాద్. కాల్ కర్నికి బహుత్ బహుత్ శుక్రియా. तो जी हाँ, ये थे के रमेश जी. एंड आई थिंक हमारे कुछ और भी कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते होंगे. तो आपको बता दूं कि अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715. तो फिलहाल के लिए हम चलेंगे एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ. सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9.

0: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: ఒక మంచి పుస్తకం మనకు కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది,
2: ఒక కొత్త ఆలోచనను అందిస్తుంది,
1: ఒక కొత్త అనుభూతిని మనలో నింపుతుంది.
2: మరి మీకు నచ్చిన పుస్తకం మీకు ఇచ్చిన ఆ అందమైన అనుభూతిని మా శ్రోతలతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?
1: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో మీకందిస్తున్న ప్రత్యేక అవకాశం రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
2: 15 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారెవరైనా మీరు చదివిన పుస్తకం గురించి
1: మీ అనుభూతిని
2: మీ మాటల్లో
1: మా శ్రోతలతో పంచుకోండి.
2: మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ వివరాలను
1: readwithrainbow2026@gmail.com కు పంపండి.
2: మీ రీడింగ్ జర్నీ
1: మీ మాటల్లో మన శ్రోతల ముందుకు. పుస్తకంతో మీ ప్రయాణాన్ని
2: రెయిన్బోతో పంచుకోండి.
1: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
2: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
3: दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ. हेलो रेनबो के साथ थे आप हमारे साथ और की आपने ढेर सारी बातें. और बातों की बात करें तो वो अभी भी ख़त्म नहीं है, बातों का सिलसिला अभी भी जारी है. यहाँ पर हमारे साथ कुछ लिसनर्स अभी भी जुड़े हुए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर अशोक जी हमारे साथ, जो कहते हैं कि दुआ करते हैं हम सर झुकाकर, ए दोस्त तू मंजिल को पाए, कभी तेरी राहों में अंधेरा आए तो रोशनी के लिए खुदा हमें जलाए. वाह क्या बात है, दोस्ती हो तो ऐसी. दूरियां होते हुए भी सफर वही रहेगा, दूर होते हुए भी दोस्ताना वही रहेगा. बहुत मुश्किल है ये सफर जिंदगी का, अगर आपका साथ होगा तो एहसास वही रहेगा. वाह क्या बात है. आपके जो भी दोस्त है आई थिंक वो काफ़ी लकी है, क्योंकि आपको दोस्ती का जो मतलब है वो बिल्कुल अच्छे से पता है और तभी आपने ये मैसेजेस मुझ तक पहुँचाए हैं. तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी. एंड देन हमारे साथ यहाँ पर हुदा है, कहती हैं कि लड़के चाह कर भी लड़कियों की बराबरी नहीं कर सकते. इतनी गर्मी होने के बाद भी खुले बालों के साथ मेकअप लगाकर कॉलेज जाना आसान बात थोड़ी है. जी हाँ, बिल्कुल आसान बात नहीं है. और वैसे भी कोई बराबरी नहीं कर सकता किसी के साथ, कोई भी जेंडर हो, क्योंकि हर किसी में एक अपनी एक खास किस्म की काबिलियत होती है. वेल, दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में, कि अगर सैलरी इक्वल होनी चाहिए तो उसके साथ और क्या क्या इक्वल होना चाहिए, किस किस चीज़ में आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए. तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ में, एजुकेशन में, रेस्पेक्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉग्निशन में. कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत सारे लोगों की मेहनत इग्नोर कर देते हैं, है कि नहीं. कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो वो चाहकर भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे मोटिवेशन ही नहीं मिलता है अगर उसका वर्क कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक इंसान को रेस्पेक्ट दें, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दें एंड इक्वल रिकॉग्निशन दें हर किसी को. रिकग्नाइज करें उनके काम को, रिकग्नाइज करें. एंड इसी के साथ दोस्तों, आज का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है. तो आज के लिए आपसे विदा चाहूँगी इस वायदे के साथ कि होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात. और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल. और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9 हर रोज़ की ही तरह. और यहाँ पर स्टूडियो में आरजे रेणुका आ चुकी हैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे इन्फरटेनमेंट के साथ. और जश्न हैदराबाद से जुड़ेंगे आप. वैसे तो हैदराबाद अपने आप में ही जश्न है, लेकिन इस जश्न में क्या क्या शामिल है ये आपको बताएंगी आरजे रेणुका. तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है. फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए.

చప్పుడు దాన్ని గట్టిగా చేయమను.

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

0: तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आईची नागोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
0: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
2: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
0: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
3: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अच्छा करेंगे।
0: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार रही। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
4: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
5: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा। ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
4: जी,
5: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी। बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहेंगे भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें। मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है। वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा। वी शुड विन द एशियन गेम्स।
4: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत

0: ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगी, कितनी संभावना है?
1: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो एक बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम।
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी। उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
3: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
2: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
2: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चेनाई। केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
5: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा रहा इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
2: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था। पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
5: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है, जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर, वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर।
2: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
5: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आए, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्यूनेशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते।
2: और पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
5: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल, आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
2: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
6: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
2: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे तीन पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
7: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
8: कितना जोश है?
7: फुल 100 of 100।
8: कितने मेडल आएंगे?
7: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
2: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
7: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
2: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
9: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
8: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
9: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
2: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
10: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
8: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
10: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
8: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
10: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
2: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
11: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
2: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है। अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
12: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
2: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोद भी मान रही हैं।
13: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
2: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलट फेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं। वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
14: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड प्लेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do. Like, not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
2: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी

0: में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
1: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे, यू कैन नॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह?
2: So I'd love to change the color of the medal. It's it'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
0: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
3: अभी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
0: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
4: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
5: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
6: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है, उन्होंने विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचीन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईचीन नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
7: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है. और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है. मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए. और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं. तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बन के आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
0: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है, लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
7: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे. पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम. इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है. तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा. ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे. अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा. इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा. और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं. मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे.
0: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
7: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे. बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 60-63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं. तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है. हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं.
0: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इस बारे में भी कुछ बताएं आप.
7: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले. इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है. तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है. इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है. पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. CWG में भी किया था जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा. एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन

0: किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो
1: जी
0: परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस। क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहां पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर,
1: जी
0: उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है। हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स, और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: भूमिका। स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: 8:30 స్టూడియో క్లాక్ లో టైమ్ అండ్ యూఆర్ లిస్నింగ్ టు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9. అండ్ ఇప్పటి వరకు మనము 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 జపాన్ లో కర్టెన్ రేజర్ ది విన్నాము. అండ్ లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ షో.

0: है, मसूड़ों की जो सफाई है या उसकी जो सेहत है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनके मसूड़ों से जो खून आता है, तो डॉक्टर साहब ये मसूड़ों से खून जो है क्यों रिसता है?
1: ये खून जो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग गम्स कहते हैं हम, ये
0: जी,
1: कॉमनेस्ट डिजीज है, बहुत कॉमन डिजीज है। एक तो है ब्रश न करने की वजह से दांत और मसूड़े के बीच में एक मादा जमा होता है क्रेविकुलर फ्लूइड में, वो सूजन पैदा करता है
0: जी,
1: जिसको अक्यूट जिंजिवाइटिस कहते हैं, उस ब्रश करने से खून निकलता है। दूसरा, मसूड़ों में सूजन विटामिन्स की डिफिशियंसी होती है,
0: अच्छा, मतलब
1: जैसे
0: विटामिन की कमी जो है।
1: जी जी
0: जी
1: विटामिन सी जिसमें बर्बरी होता है
0: जी
1: उसमें दांत में सूजन आती है, मसूड़ों से खून रसता है। लेकिन बिलउमूम जो आज जमाने में कॉमनेस्ट डिजीज है डायबिटिस,
0: ओके,
1: शकर की बीमारी।
0: जी,
1: शकर की बीमारी का मैं आपको ये बात बता दूं, पहले डायबिटिस का असर दांत और मसूड़े पे होता है, उसके बाद जिस्म पर होता है।
0: अच्छा,
1: तो शुगर
0: हाँ
1: की
0: हाँ
1: बीमारी के डिटेक्शन में दांतों का डॉक्टर बहुत अहम रोल अदा करता है। मरीज दांत के
0: ये
1: दर्द
0: तो आपने
1: से
0: हमारे सामीन को एकदम नई बात बताई कुछ
1: जी
0: मानों में।
1: जी शुगर का डिटेक्शन, मरीज
0: जी
1: जब दांत के दर्द से दांत के
0: जी
1: डॉक्टर के पहुंचता
0: जी
1: है,
0: जी
1: डॉक्टर जान जाता है कि इसके मसूड़े में जो सूजन है
0: जी
1: सिस्टमिक डिजीज की वजह से है।
0: ओके
1: जब
0: ओके
1: शुगर टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि वो मरीज शकर की बीमारी में मुब्तला, ही इज गेटिंग डायबिटीज।
0: ओके ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जाहिर है कि दांतों की सफाई जो है, हम अगर हम दांतों के अमराज से बचना चाह रहे हैं तो दांत की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो पुराने ज़माने में मंजन इस तरह की चीज़ें होती थी,
1: जी
0: अभी कई
1: जी
0: तरह के पेस्ट आ गए हैं, उसकी तशहीर हो रही है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो आप हमारे सामीन को क्या मशवरा देंगे, किस तरह के टूथपेस्ट या क्या बेहतर है दांतों की सफाई के लिए?
1: सबसे पहले मैं सामीन को मशवरा दूंगा कि मंजन में एब्रेसिव्स होते हैं, यानी दांत को घसा देने के, घस जाने के, डीमिनरलाइजेशन के आजार रहते हैं।
0: ओके
1: तो
0: ओके
1: मंजन का इस्तेमाल बिल्कुल आज के जमाने में हम बिल्कुल एडवाइज नहीं करते।
0: अच्छा,
1: पेस्ट में भी जो बिलउमूम तशहीर की जाती है, ये
0: जी
1: पेस्ट,
0: जी जी
1: लेकिन बेसिकली हर पेस्ट में फार्माकोपिया में जो मादा होता है कॉलिन 80% वही होता है,
0: जी जी जी जी
1: बकाया 20% में पोटाशियम नाइट्रेट डिसेंसिटाइजर एजेंट्स यानी सुनाहट दूर करने वाला या
0: जी
1: फ्लोरिन कंटेंट दिया जाता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे पेस्ट की शिकल कुछ बदलती है। लेकिन पेस्ट का इस्तेमाल बिलउमूम वही होता है, लेकिन मेडिकेटेड पेस्ट जो अलग आता है
0: जी
1: जिसमें पोटासियम नाइट्रेट होता है, उससे सुनसुनाहट दूर होती
0: दूर
1: है।
0: होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है डॉक्टर साहब, कि अकल दाढ़ का जो दर्द होता है तो उसका क्या हल है, और दांतों के अमराज का दूसरे अज़ा पर क्या असर पड़ता है?
1: जी अकलदाड़, यूजुअली अकलदाड़ इसलिए विजडम टूथ कहा जाता है,
0: जी
1: वो
0: जी
1: थर्ड मोलार है,
0: जी
1: यानी 18 साल से 35 साल तक, कभी
0: जी
1: 40
0: जी
1: साल तक,
0: जी
1: कभी भी
0: जी
1: निकलता है।
0: जी
1: निकलते वक्त कुदरती तौर पर दाढ़ का निज़ाम ऐसा है कि उसको निकलने के लिए सही जगह मैसर नहीं होती, तो वह तो टेढ़ा हो जाता है या बाजू वाले दांत के पीछे आ जाता है या हड्डी के अंदर छुप जाता है, जिसे इम्पैक्शन कहते हैं, वर्टिकल इम्पैक्शन, मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन वगैरह। तो ऐसी सूरत में
0: जी
1: अगर अकलदाड़ सता रहा है और आने के लिए जगह मौजूद है तो अकलदाड़ निकालने में जल्दबाजी मुनासिब नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है। अच्छा
1: अगर
0: जी
1: जगह मौजूद नहीं है,
0: जी
1: कीड़ खा रहा है, बाजू वाले दांत को मुतासिर कर रहा है, ऐसी सूरत में अकलदाड़ निकाल कर सेकंड मोलार को बचा लेना बेहतर रहता है।
0: अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि टेढ़े तिरछे जो दांतों की दुरुस्तगी के लिए लोग ब्रेसेस लगाते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: मतलब उसका लगाना या उसका इस्तेमाल कैसा, मुनासिब है या क्या है, या फैशन है, बहुत से लोग उसको अलग अलग नज़रिए जाविये से देखते हैं।
1: नहीं, बिलउमूम ये लड़कियों की शादी के वक्त टेढ़े तिरछे दांत एक मसला बनती हैं, तो इसकी दुरुस्तगी के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है ब्रेसेस लगाता है। पहले ब्रेसेस लगाने के लिए कुदरती दांत निकाल कर सांध बनाना मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन अब नए टेक्नोलॉजीज जैसे आए हैं, स्ट्रेट वायर टेक्निक, सेल्फ लैगेटिंग टेक्निक, या क्लियर पाथ वाले, या इनविजलाइन आए हैं, तो ऐसे सूरत में बिना दांत निकाले भी टेढ़े तिरछे दांतों को दुरुस्त किया जाकर खूबसूरती बरकरार और इजाफा किया जा सकती है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो दांतों की बात हो रही है, तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब हम बच्चों का भी जिक्र

0: कर लें कि बच्चों में दांतों के अमराज जो होते हैं उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, माँ बाप को किस तरह की तवज्जो देने की जरूरत है बच्चों के दांत की सेहत के हवाले से।
1: जी, एक्चुअली क्या होता है, माएं बॉटल में दूध में शक्कर मिलाकर बच्चों के मुंह में रखती हैं ताकि बच्चा दूध पीते पीते सो जाए,
0: जी
1: और वो घंटों चूंकि मीठी चीज मुंह के अंदर रहती
0: जी
1: है
0: जी
1: तो ये बैक्टीरिया को पैदा करती है।
0: जी
1: ये बैक्टीरिया के लिए एक फर्टिलाइजर जैसा काम करती है ये मीठी गिजा, और बच्चों के मुंह में जो दूध रहता है शक्कर के साथ, उससे बैक्टीरिया पैदा होकर बच्चों में कम उम्र में ही उसको डेंटल कैरीज आता है, जिसे रैम्पेंट कैरीज या बेबी बॉटल सिंड्रोम कहा जाता है।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कॉमनेस्ट डिजीज, दांतों का कीड़ जो होता है,
0: जी
1: माओं की छोटी सी गफलत और बच्चों की चाहत या उनका
0: जिद जो,
1: जिद
0: हाँ
1: वजह की
0: जी
1: वजह
0: जी
1: से
0: जी
1: बॉटल
0: जी
1: का मुंह में रखने से मीठी चीज से होता है।
0: अच्छा।
1: तो ये मीठी चीज के बगैर अगर आप गिजा देते हैं या दूध का बॉटल पिलाने के बाद बच्चे को सोने से पहले फौरी ब्रश करवाते हैं, ब्रश नहीं करता तो गीले कॉटन से दांत साफ कर देते हैं,
0: जी
1: तो ये बीमारी से ये महफूज रहता
0: मतलब
1: है,
0: ऐसा अगर माएं करेंगी तो बच्चों को दांत का मर्ज नहीं
1: दांत
0: होगा,
1: का
0: दांत
1: कीड़
0: की जी
1: नहीं
0: नहीं नहीं
1: होगा।
0: होगा। अच्छा, ये बच्चों और माँ की बात चल रही है तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा था कि हालत हमल में क्या दांत का इलाज किया जा सकता है।
1: बहुत उम्दा सवाल है, कॉमनेस्ट सवाल है और नेग्लेक्टेड सवाल है।
0: जी
1: यूजुअली माओ के पेट में जब हमल 3 महीने से कम का होता है,
0: जी
1: दांत के दर्द से आते हैं,
0: जी
1: तो चंद दवाइयां ऐसी है, टेट्रासाइक्लिन है, एनाल्जेसिक्स है, या चंद एंटीबायोटिक्स हैं जो माँ को नहीं लेने चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वो दर्द को बर्दाश्त न करके जिद्दन अगर उन टैबलेट्स को खा लेती है तो बच्चों के दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं, और
0: अच्छा।
1: ये स्टेन्स टेट्रासाइक्लिक स्टेन्स होते हैं, और इससे दांतों की बनावट में बहुत ज्यादा कमजोरी और सेहत बिगड़ जाती है दांतों की। तो
0: अच्छा
1: इसलिए हमल के दौरान दर्द कम होने वाली दवाइयाँ या जो एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन है या
0: जी
1: सेफेक्सिम है वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल मना है।
0: अच्छा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि कैंसर के जो मरीज होते हैं डॉक्टर साहब, मेरे इल्म में भी एक दो मरीज ऐसे थे कि उनका मतलब समझिए कीमोथेरेपी चल रही है, तो क्या उस वक्त दांतों का इलाज मुतासिर होता है क्या, या फिर दांत की सफाई नहीं करना ऐसा कुछ भी रहता है क्या?
1: मुंह का कैंसर अगर है तो मुंह के अंदर के दांत बिलउमूम रेडिएशन से पहले जो
0: जी
1: सेका दिया जाता है उससे
0: जी
1: पहले निकाल देने की उन्हें मशवरा दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन मोरल हाइजीन मेंटेन करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पूरे तदाबीर अख्तियार करना कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर
0: अच्छा
1: मुंह के कैंसर के पेशेंट के लिए। अगर नहीं करता है तो ये कैंसर फिर से दोबारा रिलैप्स कहते हैं फॉर्म हो सकता है।
0: ओके ओके। डॉक्टर साहब, ये डेंटल साइंस में जो जदीद इजादात आई हैं वो क्या हैं, और डेंटल इम्प्लांट से किस तरह से इस शोबे में बड़ी तब्दीली आई है?
1: ये बहुत बड़ा इनकलाब दांतों की साइंस में डेंटल इम्प्लांट्स की इजाद है।
0: जी
1: पहले जब दांत बनाए जाते थे तो केमिकल क्योर एक्रिलिक रेजिन के बनाए जाते थे, जो मुंह में छाला पैदा कर कर फोड़ा बनता, फोड़ा जाकर कैंसर बन जाता। उसके
0: जी
1: बाद हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन आया,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें भी मरीज को हर रोज दांत हर खाने के बाद निकालना, धोना, लगा लेना और मेंटेन करना होता है, रात में
0: जी
1: निकाल कर पानी में रखना, सुबह धोकर लगाना, ये चौकड़ों की देखभाल का बहुत अहम मौजू है। उसके बाद जो दांत आए FPD, फिक्स पार्शियल डेंचर, जो मेटल के बने हुए होते थे, उसके बाद अब जो लेटेस्ट डेंटिस्ट में जिरकोनिया नाम का एक मादा जो मेटल फ्री होता है उससे
0: जी
1: दांत बन रहे हैं, जो बिल्कुल कुदरती दांत का सेम साइज शेप कलर होता है। इम्प्लांट के जरिए से जिरकोनिया का जो दांत लगाया जाता है ये दांत बहुत कुदरती दांत से मुमासलत रखता है, अगरचे कि कुदरती दांत का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता, मसनवी मसनवी होता है, लेकिन कुदरती दांत से ज्यादा मुमासलत। और इम्प्लांट के जरिए से आजकल लेटेस्ट इम्प्लांट बड़ी बड़ी उम्र में भी डाले जा रहे हैं, ये
0: अच्छा अच्छा
1: इम्प्लांट
0: जी
1: में मरीज को चौकड़ों से छुटकारा, यानी निकाल के
0: अच्छा,
1: लगाने
0: वो
1: की
0: जो अलग से काम था वो,
1: एक
0: उससे, हाँ
1: झंझट कहे
0: झंझट
1: हम
0: कहें,
1: उसको,
0: जी,
1: वो
0: उससे निजात मिली
1: उससे
0: समझिए।
1: नजात मिल जाती
0: अच्छा, ये
1: है।
0: मसनूई जो अभी आपने जिक्र किया, मसनूई दांत कौन से हैं, इनके अकसाम क्या है, मतलब किस कितने तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं क्या दांत?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, दांत एक टेक्नीशियन भी बनाता है।

0: है, दूसरे ब्रांच वाला भी बनाता है, प्रोस्टोडोंटिस्ट भी बनाता है। प्रोस्टोडोंटिस्ट जो होता है दांतों को बनाने का, मसनवी दांत बनाने के माहिर को प्रोस्टोडोंटिस्ट कहते हैं।
1: अच्छा, ओके
0: जो
1: ओके
0: प्रोस्टोडोंटिस्ट जो दांत बनाता है
1: जी
0: तो ये साइज, शेप, कलर ही नहीं बल्कि मरीज की चबाने की सलाहियत बढ़ाता है, मास्टिगेटरी एफिशिएंसी, प्रोनाउंसिएशन, बातचीत में उसकी शफस्तगी आती है,
1: जी जी
0: सफाईयत आती है,
1: जी जी
0: और तीसरा जो अहम पहलू है, चेहरे का साख्त,
1: अच्छा
0: कुदरती साख्त को दोबारा बहाल करने वाला ये प्रोस्टोडोंटिस्ट होता है। इसमें कैटकम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैकेनिज्म
1: जी
0: और डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल दांतों की खूबसूरती को दोबारा बहाल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामईन के लिए आपने बहुत ही मुफीद बातें बताई, और दांत के ताल्लुक से जितनी बातें आपने बताई हैं, मुझे उम्मीद है हमारे सामईन इन बातों को सुनकर ज़रूर उस पर अमल करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: आप समाप्त कर रहे थे डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत इंटरव्यू। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर थे डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब, और ये हमें डेंटल इश्यूज से मुतालिक जानकारी फराहम कर रहे थे। हमारे आज के इंटरव्यूअर थे मोहम्मद उसामा साहब। सामाइन, प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत प्रोग्राम का। अब आइए हमारे प्रोग्राम का रुख बदलते हैं, चलते हैं एक छोटे से वक्फे पर। फिर इस वक्फे के बाद हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे।

होम की भरपूर अक्कासी करता हुआ ये मत भरा गीत। स्टे ट्यून, सुनते रहिए एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा।

बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी एक सुहाना सफर है जिसमें हम चले जा रहे हैं। पता नहीं कब किस मोड़ पर हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये बात तो 100% हमें जान लेनी चाहिए कि इस सुहाने सफर को खुशियों के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ हमें तय करना है। आने वाले पल वाले पल की फिक्र छोड़कर जो पल हमारे इख्तियार में है उसकी दिलकशी को खोने की गलती नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, या यूं हम कह सकते

कहते हैं कि ऑल इज वेल। जी हाँ, जिंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्यों, आपका क्या ख्याल है? मैं जानती हूं कि आपका ख्याल मजीद रंगीन हुआ जाता है, और क्यों ना हो, ख्याल रंगीन तो दिल रंगीन, और जब दिल रंगीन तो जिंदगी रंगीन। तो रंगों से भरे इस प्रोग्राम में रंग की जिंदा दिली की बात हम कर रहे हैं, और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने की राय हम हर पल आपको देंगे। तो आइए इस रंगीन प्रोग्राम में एक और जिंदा दिल या जिंदगी के बारे में कुछ बताता हुआ गीत हम आपकी नजर करना चाहते हैं। लीजिए सुनिए हमारे प्रोग्राम का अगला गीत।

दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम हमारे इस प्रोग्राम में ज़िंदगी से मुतालिक बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ नामों के हवाले से। तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी के तो अनगिनत नाम हैं। ज़िंदगी को एक पहेली कहा गया है, ऐसी पहेली जिसको सुलझाने में हम कभी कामयाब हो जाते हैं तो कभी खुद उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी की मिसाल खेल से भी ली गई है। ज़िंदगी को एक खेल कहा गया है जिसमें कभी हार हमें मिलती है तो कभी हम जीत हासिल कर लेते हैं। या एक और अंदाज में हम कहें तो ज़िंदगी को जंग भी कहा गया है। ये एक ऐसी जंग है जिसे हम अपनी रहती उम्र तक लड़ते रहते हैं, कभी हार तो कभी जीत। बस मुसलसिल हम ये जंग लड़ते रहते हैं और इसी तरह उम्र का ये लश्कर, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। और जब अगर इस जंग में कोई वफादार सिपाही या साथी हमारे साथ हो जाता है या हमें मिल जाता है तो ज़िंदगी की जंग जैसे हम जीत जाते हैं। दोस्तों, हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा साथी और ऐसा दोस्त ज़रूर आपसे मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना दे और आपकी ज़िंदगी में बहारें लेकर आए। तो आइए इसी उन्वान के तहत सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। लीजिए, सुनिए।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म मेरी जंग से, और इस गीत को आवाजें दी थी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी ने। बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि जिंदगी की जंग और इससे जुड़े सभी

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: दोस्तों प्रोग्राम गीत सुरीले गाता में हम एक बार फिर से आपका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों गीत हम आपको सुना रहे हैं और ज़िंदगी के बारे में इसके मुख्तलिफ नामों के ताल्लुक से हमारी बातचीत चल रही है। ये सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि आज बैनुल अख़वामी योम मसावी उजरत इंटरनेशनल इक्वल पे डे है। हर साल आज के दिन यानी 18 सितंबर को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मकसद मर्दों और औरतों के दरमियान उजरत के फर्क को खत्म करना है, यानी कि जेंडर पे गैप को खत्म करना है। आइए इससे मुतालिक कुछ अहम नुकात पर नजर डालते हैं। दोस्तों इस दिन को मनाने का फैसला अक्वामे मुत्तहिदा

यूएनओ की जनरल असेंबली ने सन 2019 में किया था ताकि इख्तसादी मैदान में ख्वातीन के हकूक को उजागर किया जाए और इसका मकसद एक जैसी या बराबर अहमियत के हामिल काम करने वाले मर्द और ख्वातीन को बराबर उजरत इक्वल पे देना है। दोस्तों आज के दिन की अहमियत को हम वाजे रखते हुए यही चाहते हैं कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भी मर्दों के बराबर जहां मराहत हासिल है वहां पर इक्वल पे के ताल्लुक से भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो आइए इस उन्वान के तहत हमारी बात को हम आगे मजीद बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गीत का, तो ये गीत सुनते हैं, उसके बाद हम कुछ और आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से, आज के उन्वान की अहमियत के ताल्लुक से जरूर आपसे बात करेंगे। सुनते रहिए 101.9 पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा।

दोस्तों, इंटरनेशनल पे डे 18 सितंबर के हवाले से हम कुछ ज़रूरी मालूमात आप तक फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जेंडर पे गैप या जेंडर पेमेंट का जो फ़र्क है, वो बैनुल अक्वामी तंजीम कार यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में ख्वातीन का औसतन मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 20% कम उजरत मिलती है। इसीलिए आज का ये दिन खुसूसन माशरे में सनती इम्तियाज जेंडर पे गैप को खत्म करने और ख्वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की याद दहानी कराता है। तो हम हर बार की तरह यही कहेंगे कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जब समाज में नारी को औसत दर्जा दिया गया है, तो ये भी जरूरी है कि इसके मुतालिक कोई जेंडर पे गैप भी ना रखा जाए। खैर, इसके तहत कोशिश मुसलसल इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है और आज हम इसकी कड़ी का एक और दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नारी शक्ति के नाम हमारा सलाम। तो आगे बढ़ते हुए एक और गीत की जानिब अपना रुख करते हैं। तो मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही बने रहिए प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आइए हम फिर से अपने उसी उन्वान की जानिब लौटते हैं जिस पर हमारी बातचीत चल रही थी, यानी कि जिंदगी और इसके डिफरेंट नेम्स। और जिंदगी हमें वैसी ही लगती है जैसे हम इसके ताल्लुक से सोचते हैं या हम जो नाम से इसे याद करते हैं। जिंदगी को हमने कभी सफर भी कहा है, रास्ता भी इसे कहा गया है और मंजिल भी। इसे एक स्टेज भी कहा गया है, एक ड्रामा भी, एक हकीकत भी और एक फसाना भी। जिंदगी को जहां मौका या अपॉर्चुनिटी कहा गया है, वहां इसे डेडलाइन या गनीमत भी कहा गया है, यानी कि आखिरी छूट। बहरहाल जिंदगी वैसी ही है जैसी हमारी सोच है, और जिंदगी के हवाले से हम जो राय रखते हैं, जिंदगी हमें उसी शक्ल में नजर आती है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसे हंस के खुशी के साथ गुजारने का गुर सीखें, जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिएं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिंदगी अगर जीना है तो हंसते हुए जियो।

रोते हुए जीना ये कोई जिंदगी नहीं। आइए गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। एक बहुत ही प्यारा नगमा मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा ये गीत है और इसके बोल जैसे ज़िंदगी के हर पल की अक्कासी करते हैं। जब भी हम ये गीत सुनते हैं तो एक नई उम्मीद हमारे अंदर जाग जाती है कि हमें ज़िंदगी को हंसते हंसते गुजारना है। ज़िंदगी में कभी आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि आंसू इंसान को कमज़ोर बना देते हैं और कमज़ोर होकर हम जिंदगी नहीं जी पाती। तो जिंदगी को हर पल जीना है, इसमें खुश रहना है, इसके हर रंग को अपनाते हुए इसको एंजॉय करना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा करने से ही हम जिंदगी के असल माने समझ सकते हैं और दुनिया में भेजे जाने का जो हमारा मकसद है उस पर खरे उतर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश यही करें कि वक्त कैसा भी हो, जिंदगी को खुशहाली, अकलमंदी, दूरंदेशी के साथ निभाएं। जिंदगी से जुड़े जितने भी काम होते हैं, जिंदगी में मोहब्बत, रिश्ते, नाते, ये सभी चीज़ें बहुत माने रखती हैं। जब हम इनसे दूर होने लगते हैं तो जिंदगी हमें बोझ नजर आती है। तो इसका ख्याल रखें कि जिस कदर जिंदगी में हम खुशी चाहते हैं, खुशी पाने से ज्यादा खुशी देने में मिलती है। तो कोशिश यही करें कि जिंदगी दूसरों को जिंदगी में खुशियां बांटते रहें, क्योंकि जिंदगी जीने का असल मजा तभी आता है। सो, मेरे साथ आप ने हमारा ये प्रोग्राम सुना। एक और गीत अभी बाकी रह चुका है, शायद हमारी बज़्म का यानी कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत है। तो लीजिए, आपके हवाले करते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा अब यहीं पर खत्म होता है, लेकिन नैरन प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अभी बाकी है, तो आइए समाप्त करते हैं पयामे शब की। लीजिए समाप्त करें।

0: बस एक बार मनाया था जश्न महरूमी, फिर इसके बाद कोई इबतिला नहीं आई। जिंदगी में जब इंसान महरूमियों को रोना धोना बनाने के बजाय इन्हें अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लेता है, तो वो अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर बड़ी सी बड़ी आजमाइश भी उसे मुतजलजल नहीं कर पाती। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान को कभी दुख न मिले, बल्कि ये है कि वो दुख को भी सब्र, शुक्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करना सीख ले। सब्र और शुक्र इंसान को आजमाइशों से ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। जो शख्स हालात से लड़ने के बजाय उनसे सीखता है, वो अंदरूनी सुकून पा लेता है। जिंदगी की तलखियां इंसान के किरदार को निखारती हैं, अगर वो इन्हें मुस्बित अंदाज में कबूल करें। जब इंसान अपनी महरूमियों को भी अल्लाह की हिकमत समझकर कबूल कर लेता है, तो फिर आजमाइशें उसे तोड़ने के बजाय मजीद मजबूत बना देती हैं। यही सब्र और रजा का आला मुकाम है।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा आज का ये नरम प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंदा महात्मे, हिंदी समाचार और अंग्रेजी न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड

को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त

0: 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट, निफ्टी सेटल्स अबव 23,300। India is emerging as trusted partner in global semiconductor industry, says Union Minister Ashwini Vaishnav. And global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth forecast to 7% for current financial year.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के और निफ्टी 23,300 से ऊपर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग जगत में भारत भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर के 7% रहने का अनुमान जताया।
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। हालांकि विस्तृत बाजार में मुख्य

0: सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.2% के लाभ में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% की तेजी आई। इससे पहले वैश्विक संकेतों के कारण बाजार गैप अप के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ।
1: In the Indian stock market today, the Sensex ended largely unchanged while the Nifty closed on a positive note. The Sensex dipped 20 points to close at 74,295. The Nifty added 76 points to settle at 23,346. However, the broader market outperformed the frontline indices. The Nifty Midcap 100 index climbed 1.2%, while the Nifty Small Cap 100 index surged 1.7%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues and traded within a narrow range throughout the session. However, uncertainty surrounding the closing auction session, or CAS, continued, with the Sensex slipping into negative territory after the CAS.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 4.3%, टाइटन में 2.1% और एशियन पेंट्स तथा मारुति में 2.2% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स में 3.7%, पावर ग्रिड में 2.5% और HDFC बैंक में 2.3% की बढ़त देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 24 out of 28 sectors urged upward. Among the top gainers, services as well as industrials advanced 1.7%, capital goods rose 1.6%, and housing finance added 1.5%. In contrast, focused IT shed 1.4%, IT lost 1.3%, and consumer durables dropped 1.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,630 companies advanced, shares of 1,703 companies declined, while shares of 215 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 95.88 रुपये पर बंद हुआ। और दिन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार पर नजर डालें तो सेंसेक्स में कुछ बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं दिखा गया, लेकिन 20 अंक की गिरावट थी। वहीं निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखी गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 3,000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज की है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से एक लंबे समय बाद इतनी बड़ी गिरावट पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं दिलचस्प कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा
0: जी।
2: पर एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एक विद्यार्थी जो के रूप में अगर मैं खुद को मानूं, तो एक्चुअली हम लोगों को आदत पड़ गई थी कि वन वे मूवमेंट स्टॉक मार्केट में अब नीचे गिर रही है, तो ये कहा जा सकते वो आदत, हमारी आदत बिगड़ गई थी। ना तो ये वन वे मूवमेंट अपवर्ड होता है, ना नीचे होता है। जैसे समंदर में ज्वार भाटा होता है, अप एंड डाउन वेव्स आते हैं, उस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है। अब जहां तक आज की इंटरेस्टिंग बात जो है, अगर उसमें सबसे दिलचस्प बात जो लगी, आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, एंड वही एक्चुअली स्टोरी है। जो आपके फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वो जब भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत क्या होता है, बड़े बड़े जो किरदार होते हैं किसी फिल्म में या किसी नाटक में, उनकी तरफ आपकी नजर तो चली जाती है, पर जो साइड रोल्स करते हैं उन वहां से नजरें हट जाती है, लाइट उनके ऊपर नहीं गिरती है, पर यहाँ पे वहां पे एक्शन हो रहा है। तो जो आपने देखा होगा मिड कैप इंडेक्स में आपने कहा और स्मॉल कैप
0: अच्छी बढ़त है
2: जी, तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे जो भारतीय जो इंस्टीट्यूशनल वित्तीय संस्थान है वो निवेश करे जा रहे हैं, और आप और हम जैसे जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा भी वहीं जा रहा है। तो ये वो हैं जो आने वाले कल के सुपरस्टार्स कहा जा सकते हैं। मिड कैप में सब तो नहीं होते हैं, कई लार्ज कैप से मिड कैप में उनका डिमोशन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, डिमोशन भी हो जाता है, तो एक क्लास नीचे भी आप उतर सकते हैं। तो वो मिड कैप ये माना जा सकता है कि आगे चल के जो कल के जो सुपरस्टार्स हैं वो वहां हैं, तो वहां पे काफी एक्शन देखा जा रहा है। और तो और ये दूसरी बात यह है कि अभी भी चाहे जितना भी कुछ लोग कहें, अभी भी लोग नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, SIP अभी भी हो रहा है। तो अगर हम अपने ब्लेसिंग्स

0: वो आशीर्वादों को गिने तो वो अभी काफी काफी जबरदस्त हैं और वो चालू है। यस, देयर इज नो डाउट कि 2000 पॉइंट जो आपने बोला निफ्टी में, तक 2000 से ज्यादा गिरा है। अगर किसी ने निफ्टी 50 में डाला होगा तो वो शायद निराश हो जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखिए एक साल भर हो गया ऊपर नीचे नहीं हुआ,
1: जी
0: पर ये अवधि भी तो नहीं है जहां पे आपको रिटर्न देखना है। आप अगर निफ्टी स्टॉक्स में डालते हैं या इवन इंडेक्स फंड में डालते हैं या इंडेक्स में स्टॉक्स में उस अनुपात में डालें जो सूचकांक में है,
1: जी
0: तब
1: जी
0: भी आपको कम से कम 5 से 8 साल की मियाद आपको देखनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। उम्मीद है कि हम काफी मेच्योर हो गए इक्विटी इन्वेस्टर्स, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स, और मुझे लगता है आगे चल के और भी मेच्योर हो जाएंगे।
1: Udayan, it's a very interesting point you've made. You've said that, you know, this is really not the time to. So, would you say that this period, well, we are seeing these so much volatility in the markets because of whatever reasons, we all know the reasons for it. It's time now for the Indian investors to, you know, this is yet another learning curve for them, that there are going to be periods like this where you would just have no option but either to just sit still. Or maybe, you know, look for opportunities where you can invest and, you know, make broaden your horizon. But this is yet another learning curve or learning lesson for the Indian investors to, you know, how to cope with periods like this when the markets are going to be in this kind of situation.
0: Very interesting point that you're making, Anubha. The reason why what you're saying is so pertinent is there's been a very large number of young investors who have come
1: Yes.
0: in.
1: Especially since COVID.
0: Yes, and my hat's off to them because people who are older than this generation, which is me, and there are many tens of thousands like me, we have seen where when the markets went up and everybody joined the party, and when markets went down, everybody fled. So that hasn't happened. That's evolution for you,
1: Right.
0: right? So we obviously the new gen investors who have come in, they have come in with the right ideas. Technology has helped them to quickly get in, but they have the stomach, which is such super news. You know, before, you know, people like us who have been observing the markets for so many decades now, we used to lament the fact that, you know, most of the people who are benefiting from
1: Yeah.
0: Indian stock markets are not Indians. That is not happening anymore. So those are things which, no matter how much of analytical doom and gloom people might come up with, some of it may be justified, some of them may not be justified, you cannot write them off. It's still working out. But yes, you're right. The fact that you have to see these periods through is education, and that's where the interesting part is. So suppose, what could one lesson be? That, okay, if you have invested in mutual funds, which is the fund manager or which is the fund which is doing well in this period?
1: Right.
0: Because if you can handle this period well, that means you are a man and not a boy. So I'm not trying
1: Coming of
0: to,
1: age,
0: yeah,
1: kind of.
0: men versus boys. It's from that standpoint I'm trying to say that. So these are the kind of things. Yes, of course, it's not always about doing something. It's also about thinking through, having a plan. And if the plan says don't do nothing, then it's a strategy, by the way.
1: राइट, लेट्स मूव ऑन.
2: उदयन, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपका इस पर जानना चाहूँ. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर के अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है, इसके बारे में सेबी के चेयरमैन ने भी कहा है कि हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.
0: बिल्कुल, दिक्कत अटेंडेंस की है. जैसे किसी ने कहा है, जैसे कॉलेज और स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, सब हाथ उठा के या अटेंडेंस मार्क हो,
1: जी
0: तो यहाँ पे किसी ने कहा है और मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगा कि ये अटेंडेंस प्रॉब्लम है. वहां पे अगर पार्टिसिपेशन बेहतर होगा, लोगों को मालूम होगा, तो एक जो और ये जो चलन है, ये जो नॉर्म है, ये जो प्रैक्टिस है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है. इसको इससे आप पीछे हट नहीं सकते.
2: बिल्कुल,
0: इवेंचुअली आपको यहीं जाना पड़ेगा. तो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, मैं बिल्कुल मानता हूं.
2: आगे बढ़ते हैं. एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 2.7% का उछाल आया, जबकि जापान के निक्केई 225 में 1.4% की बढ़त देखी गई. इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपने नीतिगत दरों को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25% कर दिया है, जो 1995 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है. बैंक के पॉलिसी बोर्ड ने 7-2 के बहुमत से इस कदम को मंजूरी दी. बैंक ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि श्रम और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मूल महंगाई 2% के लक्ष्य से ऊपर जा सकती है. बोर्ड ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बढ़ती मांग

0: और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जापान की अर्थव्यवस्था तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जैसे जैसे आर्थिक हालात बदलेंगे वो नीतिगत ब्याज दर बढ़ाना और मौद्रिक समायोजन के स्तर को व्यवस्थित करना जारी रखेगा। बैंक ऑफ जापान ने ये जो फैसला लिया है, अगर इसको येन की दृष्टि से देखें और कारोबार के नजरिए से देखें तो कितना असर हम आगे चल करके देखेंगे और इसका इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है या और भी चीजें सामने हमारे नजर आएंगी?
1: बिल्कुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो आप अरे मुद्रा स्फीति और दूसरी चीजों के बारे में बात की, ये कोई मामूली बातें नहीं है। जापान जाना जाता था बहुत ही सबड्यूड करेंसी हुआ करती थी, वहां येन में खरीदारी करके लोग, उसे कैरी ट्रेड बोला जाता था। उसकी तो मेरे ख्याल से धज्जियां उड़ रही हैं शायद इस वक्त। मेरे पास पूरा आकलन नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर अगर यहां चल रहा है, जापान की आर्थिक स्थिति को लेके, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके लोग नर्वस हैं। आपने देखा होगा कि काफी रिपोर्ट्स भी आई हैं कैसे अमरीकी जो प्रशासन है, देर मूविंग इन टैंडम विद जापानीज
0: मॉनिटरी। कह सकते हैं यूएस सपोर्ट कर रहा है इसमें,
1: वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसके बारे में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसी ने जुबान से तो नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेशन से, पर ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो किया जा रहा है एंड लोग नर्वस हैं। और हर, और सिर्फ ये जापान में ही नहीं, हर विदेश सारे देशों में बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर आप खर्चे ज्यादा करेंगे तो आपको बोरो ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप देखेंगे बॉन्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी जो यील्ड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और वो नर्वसनेस आपको दिख रही है। और जितना लॉन्ग टेन्योर्ड बॉन्ड्स है वहां पे और दिख रहा है।
2: Udayan, you know, if you look at the decision, of course, today Bank of Japan has raised interest rates. Just yesterday, Bank of England decided to hold its rate, but they said that it may go for a hike later in the year. And a day before that, US Fed raised, went in for the first rate hike in almost 3 years. And if I go a little back, the European Central Bank has also raised its rates. Now, what is interesting I find here is that while, the US Fed was a complete unanimous decision, and even ECB was a unanimous decision, but here we see in Bank of Japan, it's a 7-2 majority decision, and Bank of England. So, 6 members voted to hold while 3 others wanted a raise. What I find very interesting is, moving forward, when you look at the major central banks in the world, how challenging is it becoming for the central banks to maintain a balance between managing inflation, keeping it down, while at the same time giving impetus to the economy?
1: Anubhav, it doesn't help that the central banks haven't exactly covered themselves in glory in the last 5-6 years. And it is when you are ill, when you're not doing well, you're feeling weak, you need medicine, you need a change in lifestyle, you don't need steroids. So when you're pumping in cash, you're actually pumping steroids. And that's not exactly the cure for this kind of an issue. So what it does, it distorts many things. It suddenly makes the equity markets look more booming than it should be. The fact that it's a risky asset, you start suddenly forget and you start doing it. So it's almost as if you're not in a normal state of mind. So that's there. But I wanted to point out something very important to you, which is for US, all the other countries that you talked about, I mean, I can understand. For US, it's the right time to do it because everything is going at a broader level okay. Yes. Their inflation is up, so they want to control it. The employment is near about okay. Almost okay. Yeah. Their productivity is superb. Their per capita income is the highest in the world. Your jaw will drop when you see it. So at the moment, you want to raise something right now. This is the time to do without hampering economic growth. For others, that trade-off is there. Right. So there's a difference between what US has done and why that split. Okay. Is there in the other cases?
2: Other cases. Let's move on to the next story. Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav today said India is emerging as a trusted partner in the global semiconductor industry. Participating at a fireside chat at Semicon India 2026 in New Delhi, Mr. Vaishnav said trust is crucial in the semiconductor industry. From protecting intellectual property to enabling global companies to design end-to-end products in India. He said trusted supply chains could become one of India's

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और श्रोताओं स्टूडियो से मैं हूं साथ रोहिणी। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन पछतावा हमेशा इंतजार करता है। इसलिए जब ये एहसास महसूस हो तो जज्बातों के सफर में जी हां धैर्य बनाए रखिए। शायद जिंदगी का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है। मनमीत बने कुछ ऐसे ही गीतों को सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने जिंदगी के इस सफर में। आइए आगाज करते हैं गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से अंदाज के साथ। आपको बता दें कि ये जो गीत है लव मैरिज फिल्म से है, लता जी रफी जी की आवाज में, और इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन जी।

कहते हैं रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, तो जिंदगी का सफर अगर मेहनत से जिया जाए ना, तो वाकई में आप बहुत करीब होते हैं सफलता के, अपने लक्ष्य को पाने के। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये प्यारा अंदाज। ये अगला गीत जो आपकी नजर है, हरियाली और रास्ता फिल्म से मुकेश शिवलता जी की आवाज में। ये गीत जो भी आप सुनेंगे श्रोताओं, अनाड़ी फिल्म से है लता जी और मुकेश जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म से ये गीत।

101.1 मेगा हर्ट्ज पर यह खूबसूरत अंदाज आप सुन रहे थे श्रोताओं। कहते हैं कि जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म से। जी हां, मुकेश जी और लता जी की आवाज में ये गीत सजा है और इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जय किशन जी ने। आइए सुने ये प्यारा अंदाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, फिलहाल जो स्टूडियो की घड़ी है वो इशारा कर रही है कि मैं अब आपसे लूं इजाजत। एक और बेहद प्यारे सुरीले गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूं। दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से ये गीत है, जिसे एक गुनगुनाया है लता जी ने अपनी आवाज में और अल्फाज से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने, संगीत दिया शैलेंद्र साहब ने। फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। शुभ रात्रि, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी

बूथों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें इस ममता बनर्जी और उपराय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के

0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। चुनावों के लिए कुल 1,000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephonic call from President of UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed a deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
2: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
1: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation manufacturer Hindustan Aeronautics Limited, HAL, yesterday handed over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru yesterday. Defence Minister Rajnath Singh and Civil Aviation Minister K. Rammohan Naidu attended the handing over ceremony. HAL handed over 2 light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer aircraft to the Indian Air Force. It also handed

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आज भी चलिए हम बैठकर कुछ पुरानी बातों को दोहराते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं, कमरे की सफाई कर रहे होते हैं, तो कभी कोई पुरानी डायरी हाथ लग जाए तो जरा सोचिए क्या होता है। उसे खोलने से पहले ही बीते हुए दिनों की खुशबू आने लगती है। पहले पन्ने पर लिखी तारीख देखकर याद आता है कि उन दिनों हम कितने अलग थे। कुछ सपने थे जो बहुत बड़े थे, कुछ नाम बहुत अपने थे, और कुछ रास्ते ऐसे थे कि जिनके बारे में ये कभी सोचा ही नहीं कि ये रास्ते बदल जाएंगे। और पन्ना पलटते पलटते एक जगह आकर उंगली रुक जाती है, जहां खुद को ही मोटिवेट करने के लिए उस डायरी के पन्ने में लिख दिया था कि एक दिन

सब ठीक हो जाएगा। आज वर्षों बाद उस वाक्य को पढ़कर अचानक लगता है कि कभी कभी हमारा पुराना मन हमसे कहीं ज्यादा समझदार हुआ करता था, है ना? आप सुन रहे हैं निशिगंधा, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले की, मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है पवित्र पापी।

चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जटक।

पुराने दिनों की जब हम बात करते हैं तो हम उस दौर में भी चले जाते हैं जब हम किताबों के बीच फूल को दबाकर रखा करते थे और उस फूल में दबी होती थी बहुत सारी सुंदर सुंदर यादें। एक किताब के बीचों बीच सूखा हुआ फूल मिलना ठीक वैसे ही होता था जैसे किसी पुराने पत्र से मिलना। कभी वह फूल ताजा रहा होगा, किसी ने बड़े जतन से उसे चुना होगा और फिर किताब के पन्नों के

बीच उसे सुरक्षित रख दिया होगा। वर्षों बाद रंग फीका पड़ चुका है, पंखुड़ियां नाजुक हो गई हैं, लेकिन उसे देखकर सवाल उठता है कि किस अवसर पर दिया गया था ये फूल, किसके हाथ से आया था, कौन सा मौसम था तब। इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, या फिर शायद दिल के अंदर ही छुप कर बैठे हों, जिन्हें याद कर लेने मात्र से ही लबों पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन उस फूल ने एक काम और कर दिया, उसने साबित कर दिया कि कुछ पल बीत कर भी हमारे भीतर अपनी जगह को हमेशा बचा कर रखते हैं। ऐसी बहुत सारी यादों को साथ बैठकर साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और फिर करते हैं आपसे बातें। फिल्म का नाम है जानी दुश्मन, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अगर तुम न होते।

कि प्यार की कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं होती, कोई निश्चित शब्द नहीं होते प्यार के लिए। प्यार को जीने और समझने के लिए मन और एहसास का होना जरूरी होता है। सुबह होने से पहले किसी घर की रसोई की रोशनी जलती है, कोई चुपचाप आटा गूंद रहा है, कोई बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रहा होता है। दूध उबलने की आहट के साथ ही दिन की शुरुआत हो जाती है। घर के बाकी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन किसी एक की दिनचर्या सबके सुबह को आसान बनाने के लिए शुरू हो चुकी होती है। यह काम अक्सर तस्वीरों में नहीं आता, ना ही किसी समारोह में इसकी चर्चा होती है, फिर भी घर की गर्माहट में इसका हिस्सा सबसे बड़ा होता है। शायद प्यार की सबसे सच्ची शक्ल कई बार बड़े शब्दों में नहीं, सुबह सुबह तैयार किए गए एक छोटे से टिफिन में भी मिल जाता है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

संगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य में आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और रूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। रूप राय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण

हर एहसास का कोई नाम हो ये जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, वे परिभाषाओं से परे होते हैं। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ना उन्हें समझाया जा सकता है और ना उन्हें लिखा जा सकता है। उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, बस उन्हें पूरा जिया जा सकता है। फिर भी वो बातें दिल के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर बात को, हर एहसास को शब्दों की जरूरत नहीं होती। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल, और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पतंग और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी हम जब कुछ लिखने बैठते हैं तो कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कागज पर उतर ही नहीं पाता, कागज खाली भी नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव, वही रुकना सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिखा जाता है शायद वो उतना खास नहीं होता जितना जो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाता है। कहते हैं हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जो बीच में कहीं किसी मोड़ पर ठहर कर उम्र भर के लिए याद बन जाते हैं। अगला गीत यशुदास की आवाज में, फिल्म का नाम है स्वामी।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यूं ही तुम

जरा सोच कर देखिए कि बारिश वाली एक शाम हो, किसी सफर में हो और एक सीट बस की खिड़की के पास मिल जाए, तो जो सफर है ना वो अपने आप में बहुत सुंदर हो जाता है। शीशे पर पानी की लकीरें दौड़ती रहती हैं, बाहर दुकानों के बोर्ड धुंधले पड़ते जाते हैं और एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बादलों को गिनने की कोशिश करता है। पीछे बैठे बुजुर्ग बार बार अपनी छतरी संभालते हैं और कोई छात्र फोन पर घर पहुंचने की खबर दे रहा होता है। कोई महिला अपने बैग में बची हुई मिठाई संभाल कर रखती है। अलग अलग मंजिलों के ये यात्री, अलग अलग कहानी, कुछ किलोमीटर तक एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर एक एक करके अपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अपने अपने गंतव्य पर उस बस से उतर जाते हैं और फिर बस जो है वो अगली कहानी को साथ लेकर आगे निकल पड़ती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अभी सुनेंगे एक गीत, आवाज है मुकेश और कंचन की, फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

बचपन वाली बारिश याद है? जरूर याद होगी। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी नदी बन जाता था। कागज की नाव बनती थी और उसे बहते हुए देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती, किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी सुंदर है, जो याद है, चल पड़ने की। हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती, कभी एक साधारण कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। है ना सुंदर सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम है खुशबू।

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद, आवाज है शमशाद बेगम और आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बाद कोई जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि किताबों की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत अलग होती है। लिखने और पढ़ने वाले की जो सोच होती है वो आम लोगों की सोच से थोड़ी सी अलग होती है। लिखने वाला जो होता है ना, वो काली गहरी रात में भी रंग भर देता है, सितारों से रात को खूबसूरत बना देता है। रेगिस्तान की जो रेत होती है ना, उसे वो सुनहरी नजर आती है, और उस सुनहरी रेत में वो जीवन तलाश कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि पढ़ने वाले और लिखने वाले की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग दुनिया होती है। किताब का आखिरी पन्ना आते ही अक्सर मन उसे बंद नहीं करना चाहता। कहानी खत्म हो

जाती है। लेकिन पात्र जो होते हैं ना, वो कुछ देर तक हमारे भीतर ही ठहर जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अब इनके साथ क्या हुआ होगा। शायद यही किसी अच्छी कहानी की पहचान भी है कि उसके शब्द समाप्त होने के बाद भी उसकी दुनिया भीतर चलती रहती है। ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी भी ऐसी ही एक किताब है। हर अध्याय अपने समय पर पूरा होता है। कुछ पात्र रास्ते में मिलते हैं और कुछ आगे तक साथ चलते रहते हैं, कुछ बीच रास्ते में ही ठहर भी जाते हैं और आखिरी पन्ना आने तक हम समझ पाते हैं कि कहानी जो चल रही थी ना जनाब, ये जीवन की, ये सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं थी, ये संवेदनाओं की, एहसासों को महसूस किए गए जीवन की एक कहानी थी। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है प्रेम कहानी।

बहुत सारी पुरानी बातों को याद करते करते एक और बात याद आ गई। घर के कोने में रखा वो पुराना एल्बम, पुराना एल्बम जिसमें बहुत सारी पुरानी यादें कैद होती हैं। किसी भी पुराने एल्बम में एक तस्वीर, सोचिए जरा, अगर अचानक सामने आ जाए, चेहरे परिचित हैं, बस समय ने सबकी उम्र बदल दी है। किसी के बाल अब सफेद हो चले हैं, किसी का शहर बदल चुका है और कोई तस्वीरों में ही सिमट गया है। तस्वीर के पीछे लिखी तारीख उस दिन को फिर से जिंदा कर देती है। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो तस्वीर लेते वक्त का एक साधारण सा क्षण था, एक दिन इतना कीमती लगेगा। जिंदगी की खूबसूरती शायद यही है कि हम महत्वपूर्ण पलों को अक्सर उस समय नहीं पहचान पाते जब वो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। उन पलों की सबसे ज्यादा याद या सबसे ज्यादा पहचान हमें तब होती है जब वे बीत कर हमारी सबसे प्यारी और सबसे प्रिय याद बनकर हमारे अंदर बस चुके होते हैं। और जिंदगी इसी का नाम है। इसलिए कहते हैं कि जब वक्त हमारे साथ चल रहा होता है ना, तो हमें हर एक पल को एक याद बनाकर खुद के भीतर संजो लेना चाहिए। और यही वो वक्त होंगे, यही वो यादें होंगी जब हम अकेले खुद के साथ बैठेंगे तो हमारे चेहरे पर छोटी छोटी मुस्कुराहटें लेकर आएंगी। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन।

दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

शहर से जब हम गांव की तरफ चलते हैं तो गांव की जो पगडंडी होती है उस पगडंडी पर चलने की कोई जल्दी नहीं होती। दोनों ओर खेत, हवा में मिट्टी की सोंधी सी गंध और दूर कहीं बैलों के गले में बजती घंटियां। रास्ता बिल्कुल सीधा है, फिर भी हर मोड़ पर एक नया दृश्य मिल जाता है। किसी खेत में काम करता किसान, किसी पेड़ के नीचे बैठा राहगीर और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज। शहरों में मंजिलें जल्दी मिल जाती थी, गांव की पगडंडी रास्ते को भी याद रखने लायक बना देती है। शायद इसी वजह से कुछ रास्ते छोटे होकर भी बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म ही राजा से।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहे गए अनुमति पर चलते चलते आपको याद दिला दे, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी संबोधित करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल सिंह ने 2018 के जकार्ता 2022 के हांगचाऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ

प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ आज हूँ मैं आपका हमराही फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। कभी कभी कुछ रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर काफी होती है, एक खामोशी काफी होती है और आंखों में छुपा कोई राज दिल तक पहुंच जाता है। शाम की तन्हाई हो या रात का सुकून, मोहब्बत के कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं। और जब उन एहसासात को गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज, आड़ी बर्मन साहब का दिलकश संगीत और लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजें मिल जाती हैं तो एक गीत नहीं एक पूरा का पूरा ख्वाब बन जाता है। तो आइए कुछ पल ठहरते हैं, कुछ खामोशियां सुनते हैं और आंखों में छुपे उन अनकहे राज को महसूस करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही के इस दिलकश महफिल में

0: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। घर फिल्म का यह नगमा था और ये फिल्म आई थी 1978 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में। रात की खामोशी में जब शहर की रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती है तो दिल की आवाज जरा साफ सुनाई देने लगती है। कहीं कोई चांद को निहार रहा है, कहीं किसी की याद पलकों पर ठहरी है, और कहीं कोई अपने महबूब के नाम एक खूबसूरत सा ख्वाब बुन रहा है। कहते हैं ना, मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं होती, उसका असर तो पूरी फिजा पर दिखाई देता है। हवा कुछ ज्यादा महकने लगती है, रात कुछ ज्यादा हसीन लगने लगती हैं, और लगता है जैसे बहार ने चुपके से दस्तक दे दी हो। तो आइए आज की इस पुरसुकून रात में, आइए कुछ पल के लिए पुराने जमाने की उसी मासूम मोहब्बत में लौट चलते हैं, जहां इजहार में शरारत थी, नजरों में नजाकत थी, और गीतों में दिल की सच्ची दास्तान। फिल्म आराधना का ये सदाबहार नगमा आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन साहब का दिलकश संगीत और लता जी, और साथ में मोहम्मद रफी साहब की वो बेहद दिल को छू लेने वाली आवाज जो सीधे दिल पे दस्तक देती है। दिल की खिड़की खोलिए और महसूस कीजिए उस मौसम को, जहां हर तरफ बस एक ही पैगाम है, बागों में बहार है।
1: तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: है।

0: मुझसे प्यार है।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:23 और 45 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। दोस्तों, जिंदगी भी अजीब दास्तान है ना। कभी रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं और कभी बस एक मोड़ आता है जहां खड़े होकर समझ नहीं आता किधर जाएं और किस तरफ मुड़ जाएं। रात के इस खामोशी में जब दुनिया थोड़ी थम सी जाती है, शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर हमें अपने पुराने कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ रास्ते हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ यादों तक। कुछ लोग सफर में हमारे साथ चलते हैं, कुछ किसी मोड़ पर पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा ठहर सी जाती है। और शायद इसी एहसास को गुलजार साहब ने इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि रास्ते भी सवाल करने लगे और खामोशी भी एक जवाब बन गई। फिल्म आंधी का वो बेहद खूबसूरत गीत जिसको संगीत से संवारा है आरडी बर्मन साहब ने और आवाजें हैं लता जी और किशोर कुमार साहब की। तो आइए इस रात जरा अपने

सफर को याद कीजिए, उन चेहरों को याद कीजिए जो कभी आपके साथ किसी मोड़ तक चले थे, क्योंकि ये सफर बेहद खूबसूरत था। शायद हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर यादें कभी अलग नहीं होती।

फिर बांती का ये बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कभी कभी रात के किसी खामोश पहर में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब दिल जाने क्यों कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है। कोई चेहरा याद आता है, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी मुलाकात, और फिर लगता है जैसे वक्त गुजर तो गया मगर कुछ एहसास वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, कभी सामने होती है, कभी ख्वाबों में, और कभी बस दिल के किसी कोने में। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें हमने कभी आवाज नहीं दी, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज नहीं मिले, फिर भी दिल उन्हें उम्र भर महसूस करता रहता है। और जब उन अनकहे एहसासात को साहिर लुधियानवी के अल्फाज मिले और खयाम साहब की सादगी भरी धुनें मिले और हम सब के चहेते मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज मोहब्बत बनकर उतर आए, तो एक गीत नहीं रहता, वो दिल की एक खामोश दास्तान बन जाता है। तो आज के इस नर्म सी रात में उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा मगर शायद कह नहीं पाए, मगर महसूस हमेशा ही किया। जरा आंखें बंद कीजिए, अपने किसी खास चेहरे को याद कीजिए जिन्हें आप चाहते थे, और इस नगमे को महसूस कीजिए। फिल्म कभी कभी का ये अमर नगमा लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, कौन जाने आज रात इस गीत के किसी अल्फाज में आपको भी अपनी कोई पुरानी मोहब्बत मिल जाए। हो सकता है ऐसा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:40 और हमराही में मैं हूं आपका हमराही फेरोज। तो आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। रात का ये पहर भी कितना अजीब है ना, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर जब चारों तरफ खामोशी होती है तब दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा सुनाई देती हैं और फिर अचानक किसी की याद भी आती है। एक चेहरा, एक मुस्कुराहट, एक नजर और दिल खुद ब खुद कह उठता है ये हुआ कैसे। मोहब्बत शायद इसी का नाम है जब किसी को चाहने का एहसास धीरे धीरे दिल पर इस तरह दस्तक देता है कि पता ही नहीं चलता कब कोई अपना सा हो गया। कभी कोई नजर दिल चुरा लेती है, कभी कोई बात और कभी सिर्फ एक मुस्कान पूरी रात का ख्वाब बन जाती है। आज की इस खूबसूरत रात में कुछ ऐसी ही शरारत, कुछ ऐसी ही मोहब्बत और कुछ पुराने जमाने की वही मासूमियत लेकर आ रहा है अगला ये बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमा। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के नाजुक अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का ये दिलकश संगीत और आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी चुलबुली सी आवाज़। तो अगर आपका भी दिल कभी किसी से चुपके से लगा हो या किसी ने चुराया हो तो आज की ये पेशकश आपके लिए। फिल्म यादों की बारात का ये बेहद खूबसूरत नगमा, शायद कुछ यादें लौट आएंगी, शायद कुछ चेहरा मुस्कुरा उठेगा और शायद दिल फिर से वही पुरानी धुन गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाएगा इस नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमरा एक इस दिलकश महफिल में मोहब्बत, आखिर ये मोहब्बत है क्या चीज, एक सवाल जिसका जवाब शायद सदियों से दिल ढूंढता आया है। कभी मोहब्बत किसी की मुस्कान में मिलती है, कभी किसी की आंखों की खामोशी में, कभी एक मुलाकात में पूरी दुनिया समा जाती है और कभी उम्र गुजर जाती है, मगर दिल फिर भी कहता है कुछ तो बाकी है। मोहब्बत में अजीब सी कशिश होती है, दर्द भी देती हैं, सुकून भी, रुलाती भी हैं, और उसी आंसू के पीछे एक मीठी सी खुशी भी छुपी होती है। शायद इसीलिए मोहब्बत को समझना आसान नहीं, बस महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की समय सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों तक की खपत तक ही सीमित रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थान CNN, MS Now और पॉलिटिको के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये मीडिया संस्थान उनके प्रशासन के बारे में लगातार झूठी और काल्पनिक खबरें प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी अन्य संस्थानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ संबंधित मीडिया संस्थानों और संगठनों की ओर से कानूनी चुनौती दिए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहार जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मी सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। कोहार अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजिंदर पाल ने 2018 के जकार्ता, 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उधर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों रात हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है, हर दिन का खत्म होना किसी कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी अंधेरा सिर्फ इसलिए आता है ताकि हमें सुबह की रोशनी की कदर हो सके। जिंदगी में भी कुछ दिन ऐसे आते हैं जब रास्ते आसान नहीं होते, मंजिल दूर लगती है और दिल कहता है बस अब थोड़ा आराम चाहिए। तो आराम कीजिए लेकिन अपने ख्वाबों से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि कुछ मंजिलें हमारा इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ख्वाब हमें खुद पुकार रहे होते हैं। बस जरूरत है उस आवाज को सुनने की कि हमारा अगला कदम हमें कल से बेहतर जगह तक ले जा सकता है। तो आज की इस रात अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, जो बीत गया उसे शुक्रिया कहिए, जो आने वाला है उसका खैर मकदम इस्तकबाल कीजिए और अपने दिल में ये उम्मीद रखिए कि सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। इसी उम्मीद और इसी प्यार से, इसी प्यारे एहसास के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सफर का आगाज करते हैं फिल्म नील कमल का ये सदाबहार नगमा, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ तो बस क्या कहने। कभी कभी ज़िंदगी की पुकार बहुत धीमी होती है, बस दिल को थोड़ा खामोश करना पड़ता है ताकि उसे सुना जा सके।

मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ में नगमा था फिल्म नीलकमल से, और यह फिल्म आई थी 1968 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, रात के इस खामोश पहर में एक खूबसूरत सा ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूं, और वो है, वक्त गुजरता रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं, और जिंदगी हमें एक शहर से दूसरे शहर, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक ले जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वक्त भी नहीं मिटा पाता, और वो है, किसी की कही हुई एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में दिया गया एक सहारा, किसी के चेहरे पर लाई हुई हमारी एक मुस्कान, और वो मोहब्बत जो हमने किसी के दिल में छोड़ दी। शायद जिंदगी का असली मतलब बहुत कुछ हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि अपने सफर में कुछ ऐसे निशान छोड़ जाना है जिन्हें याद करके किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, एक हंसी आ जाए। नाम रहे या ना रहे, किसी याद हो या ना हो, अगर हमारी मौजूदगी में किसी की जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाया है, तो समझिए हमारा सफर बेकार नहीं था। तो आज की रात कल की फिक्र थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और खुद से बस इतना कहिए, जिंदगी छोटी जरूर है, मगर इससे खूबसूरत बनाने के लिए एक नेक दिल और थोड़ी सी मोहब्बत काफी है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अब एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, किनारा फिल्म का वो नगमा जो हमें याद दिलाता है कि वक्त भले ही नाम मिटा दे, लेकिन एहसासात अपनी जगह बना ही लेते हैं। गुलजार साहब के अल्फाज, आर डी बर्मन साहब का बेहद खूबसूरत संगीत, और लता जी और भूपेंद्र की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:31 और 20 सेकेंड। दोस्तों, रात की खामोशी में आज एक बात कहते हैं, एक बात करते हैं। जिंदगी में हम अक्सर यही सोचते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी पसंद क्या है, बस इन्हीं उलझनों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन कभी कभी सुकून इस सवाल में छुपा होता है, जिसे हम चाहते हैं उसे क्या अच्छा लगता है, ये बात मायने रखती है। किसी की पसंद को समझना, उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेना और बिना किसी शोर के किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना, शायद यही रिश्तों की असल खूबसूरती है। हर रिश्ता बराबर देने और बराबर पाने का हिसाब नहीं होता। कुछ रिश्ते तो बस समझने, निभाने और ख्याल रखने से खूबसूरत बनने रहते हैं। और याद रखें, किसी के लिए किया गया एक छोटा सा काम, एक छोटी सी चीज शायद आपके लिए मामूली हो, लेकिन किसी की पूरी शाम, पूरी रात, किसी का पूरा दिन, बल्कि कभी कभी किसी के लिए पूरी जिंदगी यादगार बन जाती है। तो आज हम भी अपने किसी खास शख्स के बारे में सोचेंगे और आप भी सोचिए और खुद से पूछिए उसे क्या पसंद है। शायद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार किसी बड़े वादे में नहीं बल्कि इस छोटी सी समझ में छुपा है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और सफर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है इंदीवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंदी साहब ने, और आवाजें हैं मुकेश की, यानी हम सबके बेहद अजीज, बेहद प्यारे मुकेश साहब। कभी कभी किसी की खुशी को अपनी पसंद बना लेना ही मोहब्बत की सबसे प्यारी जबान है।

जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सफर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में अगर सुने दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

दोस्तों, रात की इस खामोशी में हम और आप मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफर पर। और इस जिंदगी के सफर पर एक ख्याल जो हमारे जहन में भी कई बार आता है और यकीनन आपके जहन में भी जरूर आता होगा, लेकिन उन ख्यालात को हम आप तक पहुंचाए उससे पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप हमें अपने फीडबैक के साथ जरूर अपने पैगाम पहुंचाएं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा और ईमेल आईडी आप नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। तो आइए अरुणिमा के इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का रास्ता बहुत उलझ गया है, मंजिल दिखाई नहीं देती और आगे का सफर कुछ धुंधला सा लगता है। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी इसी में है कि हर रास्ता हमें पहले से मालूम नहीं होता। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। इसीलिए अगर आज आपके सामने भी कोई ऐसा मोड़ है जहां आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ठहरिए, सांसें लीजिए और सोचिए कि हमें जाना किधर है। क्योंकि हर नदी को अपना किनारा एक ही पल में नहीं मिलता, वो बहती है, रास्ते बदलती है, पत्थरों से टकराती है और फिर भी अपना सफर जारी रखती है। हम भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं ना, कभी रफ्तार तेज होती है, कभी कदम धीमे पड़ जाते हैं, मगर सफर रुकते नहीं। तो आज की रात हम भी रुकेंगे नहीं, जो पीछे छूट गया उसे गिले शिकवे के साथ नहीं, एक खूबसूरत याद की तरह रखेंगे और जो सामने है उसका हम स्वागत करेंगे। क्या पता

जिस मंजिल की तलाश में हम इतने दिनों से भटक रहे हैं, वो हमारे सफर में ही कहीं हमारा इंतजार कर रही हो। इसी खूबसूरत उम्मीद और सुकून के साथ अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म खुशबू से, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और आर डी बर्मन साहब का बेहद खूबसूरत संगीत है, किशोर कुमार साहब की बहुत ही

ఆకాశవాణి ఢిల్లీకి ఎఫ్ఎం గోల్డ్ ఛానల్ స్వదేశంలో 1 MHz పర్ కిషోర్ కుమార్ సాహెబ్ కి ఆవాజ్ మే యే బేహద్ ఖూబ్సూరత్ నగ్మా థా ఫిల్మ్ కినారా సే మహఫిల్ సజీ హై ఆప్కి అప్ని పసందీదా అరుణిమా కి ఆర్ రాత్ కే ఇస్ ఖామోష్ పహర్ మే కభీ కభీ దిల్ సే బస్ ఏక్ సవాల్ నికల్తా హై క్యా జిందగీ మే హర్ చీజ్ కా పూరా హోనా జరూరీ హై तो जवाब होता है शायद नहीं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते और कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। लेकिन जिंदगी यहीं तो खत्म नहीं होती ना। कभी कभी जो हमारे पास है उसे महसूस करना भी बेहद जरूरी है। देखिए ना, आसमान में आधा चांद भी निकला हो और खूबसूरत भी लगता हो, वो पूरा भी नहीं है फिर भी अपनी रोशनी से रात को सुकून देता है। तो शायद हमें भी अपनी जिंदगी की अधूरी चीजों से परेशान होने के बजाय जो मिला है उसकी कद्र करना बहुत ही जरूरी है। अगर आज दिल थोड़ा उदास है तो उसे उदास रहने दीजिए। हर एहसास को तुरंत बदलना ठीक नहीं। बस इतना यकीन रखिए ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। कल की सुबह आज की रात से थोड़ी अलग होगी और शायद कुछ नया, कुछ खूबसूरत आपका इंतजार कर रहा होगा। तो आइए आज की रात जो मिला उसके लिए शुक्रिया कहें और जो नहीं मिला उसे यह खूबसूरत ख्वाब की तरह छोड़ दिया जाए। इसी सादगी भरे एहसास के साथ अब एक बेहद खूबसूरत कलाम, एक बेहद खूबसूरत गजल हम आपके लिए लेकर आए हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की बहुत ही प्यारी आवाजों में। कहते हैं कुछ दर्द, कुछ तन्हाई और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी है इसमें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की रात और ऐसा चांद। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये बेहद खूबसूरत गजल। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन भर हम कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, काम, जिम्मेदारियां, ख्वाहिशें, और कभी कभी तो खुद से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन जब दिन ढलता है और रात धीरे धीरे अपनी चादर फैलाती है तो लगता है जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो, अब थोड़ा ठहरो, आज जो मिला उसे महसूस करो। हर दिन बिल्कुल वैसा ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कुछ दिन बहुत खुशनुमा होते हैं, कुछ दिन थोड़े मुश्किल, और कुछ दिन ऐसे जिन्हें बस गुजर जाने देना चाहिए। मगर याद रखें, कोई भी दिन हमेशा नहीं रहता। जैसे शाम के बाद रात आती है और रात के बाद एक नई सुबह, वैसे ही मुश्किल वक्त के बाद सुकून का वक्त भी जरूर आता है।

0: सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 मॉडल के प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थान CNN, MS नाउ और पॉलिटिको के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये मीडिया संस्थान उनके प्रशासन के बारे में लगातार झूठी और काल्पनिक खबरें प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी अन्य संस्थानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ संबंधित मीडिया संस्थानों और संगठनों की ओर से कानूनी चुनौती दिए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजिंदर पाल ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics this morning in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक सुबह के 5:11 और 5 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब और आज की इस नई सुबह में आपका शानदार इस्तकबाल है। एक नई सुबह, एक नया दिन और जिंदगी की तरफ से मिला एक और खूबसूरत मौका। सुबह की पहली किरण

जब खिड़की से अंदर आती है तो लगता है जैसे कुदरत हमें धीरे से याद दिला रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। और आज हम भी एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी के साथ। आज की शुरुआत किसी फिक्र से नहीं, एक छोटी सी दुआ के साथ। उस ईश्वर से, उस खुदा से दुआ करेंगे कि आज का दिन हर किसी के लिए आसान कर देना, जिसके दिल में कोई परेशानी है उसे सुकून अता कर देना, जिसके घर में कोई बीमार है उसे शिफा देना, जिसके दिल में कोई ख्वाहिश है अगर उसके हक में बेहतर हो तो उसे पूरी करना। ये सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया हुआ, उस खुदा का दिया हुआ है। ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ, ये जिंदगी भी हमारी उन्हीं की दी हुई है। तो हमारे दिलों से गुस्सा, नफरत और गिला, शिकवा कम करना और उनकी जगह मोहब्बत, सब्र और प्रेम भर देना। इसी उम्मीद के साथ आइए आज के सफर का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तेरी है जमीन तेरा आसमान। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये नगमा सुषमा श्रेष्ठ की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में अगर जो दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की ये दिलकश महफिल, एक नई सुबह, एक नया दिन और अपने ख्वाबों को फिर से जीने का एक नया मौका। सुबह की पहली किरण हमें ये तो सिखाती ही है, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, आज को एक खूबसूरत शुरुआत दीजिए। जिंदगी में हर दिन हमारे मुताबिक हो ये मुमकिन नहीं, लेकिन हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। तो आज सुबह फिक्र थोड़ी कम कीजिए, मुस्कान थोड़ी ज्यादा रखिए, जो आपके पास है उसके कदर कीजिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए और अपने दिल से कहिए, आज का दिन खास है क्योंकि ये मेरा आज है। यकीन रखिए, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी पूरे दिन को रोशन कर देती है। तो चलिए इस उम्मीद और ताजगी को एक बार फिर से नगमे के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस उदास की बेहद खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप